0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना, मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: यार सुबह सुबह ये किसने दस्तक दे दी?
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मैंने दस्तक जरूर दी, लेकिन आपकी और हमारी दोनों की जिंदगी में ये किसी और ने दी है? एक नई तारीख, एक नया महीना और साथ ही एक नई शुरुआत ने. Welcome to the very first day of June. यार पता है क्या, मुझे हमेशा लगता है कि जिंदगी हमें नए साल से ज्यादा मौके नए महीनों में देती है, क्योंकि हर महीना एक फ्रेश चैप्टर लेकर आता है, एक नए चांस का, कुछ बेटर करने का, कुछ नया सीखने का, या फिर बस खुद के लिए ही सही थोड़ा ज्यादा वक्त निकालने का. अगर पिछले महीने को देखने की कोशिश करें तो शायद उसने हमें बहुत कुछ दिया, कुछ यादें, कुछ सीख, कुछ खुशियां एंड शायद कुछ चैलेंजेस भी. लेकिन आज उन सबको दिल से थैंक यू बोलते हैं और एक नए तौर तरह से नए महीने की शुरुआत करते हैं. क्या कहती पब्लिक? तो भैया अगर किसी चीज को लेकर वेट कर रहे थे, किसी नए गोल को शुरू करने का एक नया मौका ढूंढ रहे थे, तो शायद दिस इज योर चांस, लेट्स डू इट. लेकिन अभी फिलहाल एक काम और कर दो, मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दो. 5000 1896. I'm eagerly waiting for your messages. Instagram Mirchi1Qatar ya Mirchi Anshu. Let's get started. Enjoy. Bindi ka naam Anshu.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vidva la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बुलाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानूँ, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पकड़।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's

0: भाई हमसे ज्यादा ड्रामे तो दरअसल इनके हैं। वेलकम बैक टू कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची एंड दिस इज आर्यांशु विद यू। मतलब अगर ड्रामे की बात करूं तो इस वक्त सूरज चाचू हमारी जिंदगी में जितना ड्रामा लेकर आए ना शायद ही कोई और लेकर आए हो। जरा देखे ना हर वक्त इनका ये जो मूड है कितना अलग अलग होता है। अगर सुबह देखने की कोशिश करें तो लगता है भाई चलो मैनेजेबल है, लेकिन जैसे ही दोपहर आती है कहीं ना कहीं इनका ओवर टाइम पूरी तरह से शुरू हो चुका होता है। हैविंग सेड दैट, शाम के वक्त इस वक्त भी कहीं ना कहीं हमारे कलेजे को ठंडक जो है ना मिल ही रही है। लेकिन ऑफिशियली अब हमारी जिंदगी में वो सीजन आ चुका है या वो महीना आ चुका है जब वेदर फोरकास्ट से ज्यादा अगर आप किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो है एसी का रिमोट। एक बात बताओ, ये सिर्फ मैं ही हूं जिसे एसी का रिमोट नहीं मिलता या आपके घर पे भी रबर बैंड एंड एसी के रिमोट, ये दो चीजें ऐसी हैं जो अक्सर गायब होती रहती हैं? नहीं, मुझे ऐसा जरूर लगता है। वेल कुछ करें ना करें एक काम पे एक एरिया पे अपना ठौर ठिकाना ढूंढना जो है ना जरूर शुरू कर दें, वो है कार की शेड वाली पार्किंग। भाई साहब कॉम्पिटिशन तो अब यहां शुरू होगा।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वैसे अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं, इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 33। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब सारा पानी जो है वो पीते रहें, सनस्क्रीन को बेस्ट फ्रेंड बना के रखें, कलेजे दबा के ठंडक के लिए। अंशु है ना, स्टेडियो टेम्परेचर, बंदी का नाम अंशु।

0: वले रहमान की व्हाट अ लवली कॉम्पोजिशन एंड क्या ही प्यारी सी खूबसूरत सी आवाज़ पेनी दयाल एंड तन्वी का साथ एंड ये लवली सा ट्रैक, ये तो मैंने आपको सुना दिया। वैसे आज सुबह से 90s के बहुत सारे गाने मैं आपको सुनाते आ रही हूँ। नॉस्टैल्जिया यार, कभी कभी इसमें ना डाइव इन कर ही लेना चाहिए, है ना।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, इतना बता दूँ, आपके और मेरे अलावा इस वक्त कतर में किसी और ने भी अपनी अटेंडेंस जो है ना वो ऑफिशियली लगवा ही दी है। Well, इतना समझ जाए, जब फाइनली हम एसी से बाहर निकलते ही ये बोलने लगे भाई साहब क्या गर्मी तो इतना समझ जाओ कि आउटडोर काम करने का वक्त जो है ना अब जा चुका है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की है। आज की तारीख को हम देखने की कोशिश करें तो बस आज से लेकर 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक आउटडोर यानी कि ओपन वर्क साइट्स पर काम करना अलाउड नहीं है। तो वो जो भीषण गर्मी के दौर में ओपन स्पेसेस में काम करने पर बैन लगता है वो फेज जो है ये पूरी तरह से शुरू हो चुका है। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि ऐसा कोई भी शख्स अगर आपको नजर आए इतनी गर्मी में भी ओपन एरिया में काम कर रहा है तो बिल्कुल उसे जाकर आप ये कह सकते हैं कि भाई जा अपने बॉस को बोल कि ये जो है ना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के हिसाब से। यार बहुत ज्यादा ख्याल रखें, पानी जो है अच्छी तरह से पीते रहें, कलेजन दिमाग की ठंडक के लिए लेकिन एक ही काम करना है, मेरी आवाज सुनना। कहा ओनली ऑन कतर नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। देखो जी बात इतनी है, आप तो मेरी आवाज सुन रहे हैं लेकिन मुझे कैसे पता चले कि आप जो है इस वक्त पूरी तरह से कनेक्टेड है। यू नो व्हाट यू हैव टू डू मैन, कम ऑन, गुड मॉर्निंग मैसेज, आई एम ईगरली वेटिंग 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल मिर्ची मॉर्निंग्स इज ब्रॉट टू यू बाय
2: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
0: Raghav Chaitanya ki awaaz Jonita Gandhi ka saath bahut hi pyara sa ye brand new track hai. Enjoy. Bindi ka naam Anshu.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 89.6 89.6 FM मिर्ची 1 Hey, good morning. I hope you're enjoying the show. एक काम करते हैं, एक बार फिर से अर्ली 2000s में डाइव इन करते हैं मदर 2 से मोहम्मद इरफान एंड अरिजीत सिंह की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गाना है। And now this happens to be one of my most favorite tracks. जो मैं आपको सुनाती हूँ, अगर गाना पसंद आए तो एक थैंक यू मैसेज हुआ जरूर भेजना। नहीं, जस्ट वो कॉलेज स्कूल टाइम ऐसी कोई फीलिंग। 5000 1896 I'll be eagerly waiting for your messages. Meanwhile, enjoy this track on मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।

0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. Isala kap naam de. Nahi, matlab mujhe pata nahi. Isi tarah bola jata hai ya kaise bola jata hai? Lekin haan, jo maine padha wo maine bol diya. Well, jitne bhi Bangalore ke fans hain, ek bar phir se aapko bahut bahut bahut bahut mubarak baad. Kya baat hai yaar. Well, Bangalore ne ek bar phir se dusri dafa ye trophy ko apne haathon mein uthaya and back to back wins ki is league mein Chennai and Mumbai ke saath shamil ho gayi. Yeah, lekin baat itni hai na, ye baat to tay hai ki agar aaj bhi Bangalore ki team ke aap win ko dekhne ki koshish karenge to Virat ke bina ye puri tarah se adhuri hai. Virat ke Virat presence ke bina ye puri tarah se adhuri hai, kyunki kehte hai na ki kuch players jo hote hain wo records se yaad rakhe jate hain aur kuch players emotion se. And agar Virat Kohli ko aap dekhne ki koshish kare, ये जिन्होंने एक पूरी जनरेशन को क्रिकेट से प्यार करना ही सिखा दिया यार, हमने उनके साथ सेलिब्रेशंस देखे हैं, अग्रेशंस देखे हैं, हार्ट ब्रेक देखी है, यू नो लॉयल्टी देखी है, एंड कल फाइनली वो मोमेंट भी देख लिया जिसका वेट उन्हें और उनके फैंस से कई सालों से तो था, लेकिन एक बार दोबारा उस पल को जीने का मौका मिला. इमेजिन करें यार, कोई एक बंदा एक टीम के साथ इतने डेडिकेशन के साथ पूरे 19 सालों से जुड़ा हुआ हो, 18 साल के बाद उसे पहली जीत हासिल हुई हो. कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, एंड उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं. एंड विराट कोहली की कहानी जो है ना, इस बात को पूरी तरह से बयां करती है. हैविंग सेड दैट, बेंगलुरु की जीत का पूरा क्रेडिट सिर्फ विराट को देना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि उन्होंने कल खुद ये बात कही जिस तरह का टीम का परफॉर्मेंस रहा है ना, यूनिटी के साथ, सोच समझ के साथ, हर एक गेम में अपनी स्ट्रेटजी को बदलते हुए जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, सही मायने में इस बार की जो जीत है ये पूरी की पूरी टीम के नाम है. बढ़िया जी, बधाई, बहुत बहुत बधाई. लेकिन जहां पे एक तरफ कल के फिनाले में हमने एक जबरदस्त मैच होते हुए देखा, कई बार जब सांस एक बार थमी भी लगा कि यार मैच जो है ना फिर से जिंदा हो रखा है. जो विकेट्स जो है बैक टू बैक बेंगलुरु की टीम के गिरने लगे, या बीच में फील हुआ कि भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप गुजरात को लाइटली नहीं ले सकते, लेकिन इन सबके बीच में ना यार फिर भी कहीं ना कहीं एक मोमेंट मिस हुआ, एंड वो है वैभव सूर्यवंशी. आई डोंट नो इफ यू वुड अग्री विथ मी और नॉट, लेकिन एक जनरेशन थी, या कहना चाहिए कि एक लोगों का ग्रुप था जिसने फाइनली इन लीग्स को फॉलो करना छोड़ दिया था. यू नो बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये एक बंदा है जो आया, ये बच्चा आया और एक बार फिर से हम सबको क्रिकेट से प्यार करना सिखा ही गया. मतलब अगर आप IPL के क्रेज़ की अगर बात करें ना इन पर्टिकुलर, तो मैं सच कहूँ पूरे के पूरे सीजन में जितना क्रेज़ एंड जितनी तड़प या तलब वैभव सूर्यवंशी को देखने की रही है ना यार, शायद ही किसी और को देखने की रही है. मतलब आप सोचें किसी बंदे के टैलेंट में कितनी ताकत है कि वो ये हुनर रखता है कि एक बार फिर से पूरी की पूरी आवाम वो किसी चीज़ से प्यार करा दे. तो बहुत मज़ा आया फिनाले में, लेकिन वैभव वाज डेफिनेटली मिस्ड, उसे होना था यार. क्या आपकी राय मेरी राय से मिलती है? 5000 1896. लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन का तरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची एंड मिर्ची मॉर्निंग्स. इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: मेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल बेंगलुरु फैंस. येट अगेन, एक बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म कुर्बान. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खटखट,
5: हू दैट?
4: जाहिर।
5: जाहिर, जाहिर हूँ।
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
5: खटखट, हू दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: की खूबसूरती आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई कोई गाना इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. हैविंग सेड दैट, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7:03.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखो यार, बात इतनी है ना कि अब इसका बोलबाला है, एंड सॉलिड बोलबाला है.
2: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings, and this is RJ Anshu with you. Well, इस वक्त अगर मैं कदर को देखने की कोशिश करूँ तो इतना समझ जाइए कि समर कैंपेन कुछ इस तरह से शुरू हुआ है कि आने वाले दिनों में कतर में अगर किसी चीज़ का बोलबाला है तो वो है बेहतरीन कमाल के इवेंट्स का. एब्सोल्युटली हुआ दैट राइट. ऑलरेडी हमारे सामने ये बात जो है विजिट कतर ने पेश कर ही दी थी कि इस बार समर्स में आपको कतर में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पहले ना ही देखी हो. एंड अगर आप ईद के ही पूरे के पूरे इन छुट्टियों को देखने की कोशिश करें, आप जानते हैं जिस तरह के कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए कटारा कल्चरल विलेज में, एक तरह से फिर से जो वो आलम जो है क्रिएट हुआ हमारे सामने सजा, या तो फिर पॉल कतार की बात करें, कतर के कोने कोने की बात करें, तो बस ये सिलसिला जो है कंटिन्यू होने वाला है. एंड इतना बता दूं, आने वाला महीना जो है ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा. जैसे ही आपको लगे कि वेकेशन शुरू हो रहे हैं, जस्ट इन केस अगर आप कतर में ही आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो इतना समझ आइए बहुत सारे पार्क्स के अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं खासकर जो इस बार के समर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई हैं, ये इंश्योर करने के लिए आप और हम जो है ना कहीं पे भी किसी भी तरह से बोर ना हो. हैविंग सेड दैट, कतर की बिगेस्ट टॉय फेस्टिवल यानी कि कतर टॉय फेस्टिवल की अगर हम बात करें, सो इट इज अबाउट टू रिटर्न स्टार्टिंग July 1st until 31st of July, एंड इज अबाउट 22,000 square meters के पूरे के पूरे स्पेस में ये स्प्रेड आउट होगा. एंड यार, मैं जब भी ऐसे किसी इवेंट में जाती हूँ ना, मेरे अंदर के का जो ये बच्चा है ना वो निकल कर जरूर बाहर आता है इवेंचुअली. इधर तो बच्चा है जी. तो भाई, दो एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में एक बार फिर से आप टॉय फेस्टिवल का मैजिक लाइव विटनेस करेंगे. नाउ यू टेल मी, व्हाट आर योर प्लान्स दिस समर वेकेशन? क्या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? लेट मी नो यार. आई विल बी फ्लाइंग आउट इन जनवरी, इन जुलाई. हाँ, जान में तो मैं होके आएंगे. जुलाई में मैं तकरीबन 20-25 दिनों के लिए जाऊंगी, बहुत सारी जगह जाने वाली हूँ. बाद में प्लान बताऊंगी. आपकी क्या प्लान्स हैं? 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल, यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची. बंदी का नाम अंशु.
1: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Milchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virtua la murga. Milchi, murga.
2: हेलो
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1st September 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर,
5: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
8: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
9: कैसे रुक सकता है?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, आसमान की अगर हम बात करें तो यह हीरे के अलावा हमारे जो रांझे हैं ना, वो भी इस वक्त आसमान पे हैं।
2: मिर्ची अंशु
1: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. कभी अपने घर के आगे अपने कॉलोनी में बैडमिंटन का वो गेम खेला है? नहीं, हमारे लिए बैडमिंटन का मतलब उन दिनों बस यही होता था, स्कूल के गेम पीरियड में खेला गया एक खेल, या तो फिर घर के आगे शाम के समय एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खेला गया एक मीडियम, है ना। लेकिन अगर आज की डेट में दुनिया को देखने की कोशिश करें, खासकर भारत की बात करें, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है पूरी तरह से बदल गया है। चलिए आपको लेटेस्ट अपडेट ही अगर मैं देने की कोशिश करूं तो एक बार फिर से भारत ने बैडमिंटन के इस कोर्ट में पूरी तरह से कमाल किया, एंड इसकी वजह अगर कोई बने तो वो है सात्विक एंड चिराग। वेल, पहली बार किसी इंडियन मेंस डबल पेयर ने सिंगापुर ओपन का टाइटल अपने नाम किया, एंड जिस अंदाज में किया उसने पूरी बैडमिंटन दुनिया का ध्यान जो है ना एक बार फिर से भारत की ओर खींच लिया है। इमेजिन करें यार, वर्ल्ड नंबर वन पेयर को हराना, वर्ल्ड नंबर थ्री को फिर पूरी तरह से डोमिनेट करना, एंड फाइनली ये ट्रॉफी अपने नाम करना, ये इतने आसान बात या आसान फीट नहीं थी यार। इसके साथ ना देखो, एक मैसेज जो ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ है, दैट इंडिया इज नो लॉन्गर पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड बैडमिंटन, इंडिया इज कम्पीटिंग टू डोमिनेट इट। एंड ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, मतलब अगर आप इस सक्सेस की फाउंडेशन को देखने की कोशिश करें तो जब साइना नेहवाल ने दुनिया को दिखाया कि एक इंडियन लड़की भी वर्ल्ड नंबर वन बन सकती है, जब पीवी सिंधु ने ओलंपिक मेडल्स जीत कर बैडमिंटन को भारत के घर घर तक पहुंचाया, भाई उन्होंने ना एक जनरेशन का सपना जो है ना ही सिर्फ पूरा किया बल्कि उन्होंने सपना देखना भी सिखाया। एंड आज की डेट में सात्विक चिराग ने उस सपने पे एक नई परत जो है ना वो लगाई दी है। बढ़िया यार। इसके साथ ही अगर लक्ष्य सेन की मैं बात करूं, मतलब ये मुमकिन है कि इस वक्त मैं उनका जिक्र ना करूं, जिस तरह से उनकी रैंकिंग ग्रेजुअली इंप्रूव होती जा रही है, जिस तरह से वर्ल्ड नंबर वन वर्ल्ड नंबर टू को उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया है, भाई ये बात तो समझ में आ रही है कि क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा खेल जो इस वक्त भारत के घर घर के लोगों को बहुत जल्द जोड़ने वाला है ना, तो वो है बैडमिंटन। एंड आने वाली जनरेशन बहुत ब्राइट है, उन्नति हुड्डा को ही देख लीजिए, 18 साल की बच्ची है, अनमोल खर्ब की बात करिए, आयुष शेट्टी की बात करें, क्या पता यार बहुत सारे उभरते कलाकार में हमारे आज के बच्चे भी उस नाम के लिस्ट में ना ही सब शामिल हो बल्कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स की लीग को टॉप करें। वैसे क्या आप कतर में कभी बैडमिंटन वगैरह खेलने जाते हैं ऑफिस के बाद? मैं जरूर जाती हूँ, आप कहीं जाते हैं तो आपको ज्वाइन करूंगी। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड डे इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल रेखा भारद्वाज की आवाज़ यानी अगला गाना, एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000-1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: आएंगे दीदी. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: माहौल बन जा रही है खूबसूरत सी आवाज और लवली ट्रैक यार, क्या प्यारा सा गाना है। वैसे एक बात कहूँ, ये जो जोड़ी है ना, ये भी बड़ी प्यारी है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Aaj Anshu with you. अगर सबसे खूबसूरत सबसे प्यारी जोड़ी की बात करूँ तो वो तो वैसे आपकी और हमारी है, लेकिन ठीक है यार, दुनिया में जितनी खूबसूरती है ना, कहते हैं उसकी भी तारीफ करते रहना चाहिए, अपने अलावा किसी और की भी। Having said that, अब तो कोई कॉन्वर्सेशन है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ। आप इस कॉन्वर्सेशन यानी कि इस बातचीत को सुनेंगे एंड मुझे बस ये बताएंगे ये है तो है किस फिल्म से, क्योंकि बस अब शुरू हो चुका है।
2: शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
0: राइट देन, आइडेंटिफाई करना है कि एक इस फिल्म से और साथ ही किन दो लोगों के बीच में है। अगर आपको लगे कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फटाफट से करेक्ट आंसर मुझे आप भेजेंगे 5000186 पर। 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची आंशु। एंड अगर अपनी आवाज में सही जवाब रिकॉर्ड कर भेजेंगे तो बस जनता जनार्दन तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम मेरा डिपार्टमेंट। चलिए जी, इस वक्त ये कॉन्वर्सेशन सुन लें।
3: जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो, प्यार व्यापार की जोड़ी कभी नहीं बैठती
4: ना। मैं तो सिंगल ही बेस्ट।
5: तू कहाँ पहुंच गई? प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा।
4: क्या गारंटी है?
5: ले ब्रेड पौड़ी कसम।
3: जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो, प्यार व्यापार की जोड़ी कभी नहीं बैठती
4: ना। मैं तो सिंगल ही बेस्ट।
5: तू कहाँ पहुंच गई? प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा।
4: क्या गारंटी है?
5: ले ब्रेड पौड़ी कसम।
0: अच्छा हुआ बेटा तुमने ना ब्रेड पकौड़ी की कसम खा ली थी। अब क्यों कहाँ कैसे ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप बताएं ये फिल्म है तो है कौन सी। कौन यार, मजा आता है मुझे जब आपके जवाब आते हैं। फटाफट से करेक्ट आंसर्स भेजें। मीनवाइल मैं जो हूँ यो यो हनी सिंह की आवाज में धीरे धीरे ही सही, लेकिन जल्दी जल्दी गाना पहुंचा। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबाब बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: वेल बादशाह अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, जितना खूबसूरत ये गाना है उससे भी ज्यादा प्यारी ये जोड़ी है।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You are listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, अब से कुछ देर पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन थी जो मैंने आपके बीच पेश की थी एंड आपको सुनकर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। वैसे इस फिल्म की कहानी भी काफी दिलचस्प है एंड इसके बाद की कहानी भी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो मैं बताती हूँ। लेकिन उसके पहले जिस कॉन्वर्सेशन की बात हो रही थी उसे एक बार फिर से आपके बीच पेश कर दिया जाए फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन। एंड अगर आपको लगे कि अभी भी सुनकर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो बस करेक्ट आंसर फटाफट से मुझे भेजेगा 5000 1896 पर। 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर एंड हियर यू गो।
2: जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो, प्यार व्यापार की जोड़ी कभी नहीं बैठती ना। मैं तो सिंगल ही बेस्ट।
3: तू कहाँ पहुंच गई? प्रॉमिस मैं कभी फ्रेंडशिप के आगे नहीं बढ़ूंगा।
2: क्या गारंटी है?
0: बेटा तुम आगे बढ़ी नहीं, इससे औरों के आगे बढ़ने का रास्ता जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। दुनिया को प्यार का एक नया पर्याय जो है वो मिल गया। देखे लोग बाग क्या ही कह रहे हैं, ये कौन है?
4: ये आवाज है अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह। मूवी का नाम है बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात। और मेरा नाम है सुनील फ्रॉम मुंबई।
5: Good morning, RJ Anshu. The name of the movie is Band Baja Barat. This is Fedra. Radio Mirchi, it's hot.
6: Hi, good morning. The name of the movie is Band Baja Barat, produced under the banner of Yes Raj Movie. And the protagonist are Ranveer Kapoor and Anushka Sharma. This is Mohammad Akhtar. Thank you.
7: The movie is Band Baja Barat. And the conversation is between Anushka Sharma and Ranveer Singh. And my name is Azab.
0: Well, absolutely, आप सबने जो कहा ये पूरी तरह से सही। तो ड्रम्स को एक बार रोल जो है वो मैं करूँ ना करूँ, लेकिन हाँ कुछ तो है आपके लिए जो मैं जरूर बजाऊंगी। और एक ऐसी फिल्म जिसने ना ही सिर्फ ऑडियंसेस का दिल जीता बल्कि हिंदी सिनेमा को एक नया स्टार भी दिया। तो उस फिल्म का नाम है बैंड बाजा बारात, जो कि रिलीज हुई साल 2010 में। एंड इस फिल्म में अगर कोई नजर आए तो वह है रणवीर सिंह, जो इनकी डेब्यू मूवी थी। एंड इनके साथ ही अनुष्का शर्मा। एंड फिल्म को डायरेक्ट किया मनीष शर्मा ने एंड प्रोड्यूस किया था आदित्य चोपड़ा ने। एंड इसका सुपर हिट म्यूजिक दिया था

0: सलीम सुलेमान ने। वेल, अगर दिल्ली की शादियों की रंगीन दुनिया पर बनी इस फिल्म की हम बात करें तो श्रुति एंड बिट्टो की पार्टनरशिप, यू नो, उनकी नोकझोंक, उनकी फ्रेंडशिप और उनके रोमांस से लोगों ने इतना कनेक्ट किया कि कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है ये कल्ट फेवरेट बन गई। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के बाद एक नया रिश्ता भी शुरू हुआ था, एंड वो है अनुष्का एंड रणवीर का। ऑन स्क्रीन के अलावा, रियल लाइफ के अलावा, रियल लाइफ में भी इनकी जोड़ी को ना लोग जो है काफी पसंद करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी के नसीब में कौन लिखा है भाई, ये बात तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। इट वॉज ईयर 2013 जब फाइनली अनुष्का की मुलाकात हुई विराट कोहली से एक एडवर्ट के शूट के दौरान। तब तक अनुष्का जो है रीबाउंड फेस पर पहुंच चुकी थी, उनका ब्रेकअप हो चुका था, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। चलिए एक काम करते हैं, इस वक्त एक आपको बहुत ही एक्साइटिंग सी कॉन्वर्सेशन है जो मैं फिर से सुनाती हूँ। यही सीन जो कि रिक्रिएट किया गया, लेकिन किन दो लोगों के बीच, ये तो आप पहचान ही जाएंगे। हियर यू गो।
1: प्यार व्यापार की जोड़ी कभी नहीं बैठती ना भैया, मैं तो सिंगल ही बेस्ट।
2: बिजनेस कर ले मेरे साथ, ब्रेड पकौड़ी कसम कभी धोखा नहीं दूंगा।
0: हाय हाय, ये ऐसा बिजनेस हुआ, ये ऐसी लाइफ पार्टनरशिप हुई कि पूरी दुनिया चाहती है कि बिजनेस हो तो बस ऐसा हो। अगर व्यापार और प्यार की जोड़ी कुछ ऐसी विराट अनुष्का जैसी हो जाए ना, तो इंसान को चाहिए तो क्या ही चाहिए। एंड सच को यार, जब जब इन दोनों को देखती हूँ ना मैं एक साथ, कहीं ना कहीं प्यार पे यकीन एक बार फिर से हो जाता है। ये बात होता है। विंग्स एट दैट, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय
3: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: जरा सा बैंड बाजा बारात हो जाए, क्या कहती पब्लिक, एंजॉय।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood, Bollywood, only on Mirchi, it's hot.
4: अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: खट खट
2: कौन है
1: अज्जू
2: अज्जू कौन
1: अज्जू ना आए बालमा सावन बीता जाए होए
2: खट खट हू दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: वेल आ रही हैं, आपने पुकारा और हम आ गए. मिर्ची करी उस वक्त बज रहे हैं 8:03.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
0: वेल इतना बता दूं, कुछ करे ना करे लेकिन उस वक्त ना ये काम करना बहुत जरूरी है. Hey, welcome back. You listen to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. Well, सारी के सारे अपडेट्स को आप तक पहुंचाने की जो मेरी कोशिश है ना, ये जिंदगी में हमेशा चलती रहती है. चलिए एक काम करते हैं, इस वक्त एक खास अपडेट आपके बीच पहुंचाते हैं. वैसे दूसरा अपडेट जो है वो भी हम बता ही देंगे.
1: What is the price of fuel, you beauty fuel?
0: Well, इस वक्त अगर हम सुपर ग्रेड पेट्रोल की बात करें, so it is at Qatri Riyal 2.10 per liter. इसके साथ ही अगर मैं प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की बात करूं, so it is priced as Qatri Riyal 2 per liter for June as compared to Qatri Riyal 1.90 that was in the month of May. So fuel के जो prices हैं कहीं ना कहीं सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं बदल भी चुके हैं. लेकिन देखिए यार, आपकी गाड़ी के फ्यूल की बात तो मैंने कर ली, लेकिन एक ऐसा फ्यूल जो आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो है पानी. हाँ जी, पानी पानी होना जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है अगर आप खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें. वेल, गर्मी जो है ग्रेजुअली बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एंड सच कह रही हूँ, जो डिजीनेस है या कहीं ना कहीं सर में दर्द है, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इसका वन ऑफ द प्राइम रीजन अगर कुछ है तो वो है डिहाइड्रेशन. कितने भी बिजी रहे, कितने भी व्यस्त क्यों ना रहे, फुल्ली अपने आप को हाइड्रेट रखना ना भूलें. बहुत ख्याल रखें, कैफीन से खुद को थोड़ा इस वक्त दूर रखें. मुझे पता है टी कॉफी लवर्स की स्थान जो है काफी अलग है, काफी निराली होती है. गर्मी हो या ठंडी, हाय, वो एक कप जो है ना, वो एक प्याली जिंदगी के ढेर सारे सुखों को लेकर आती है. लेकिन यार जो भी हो, कुछ पिए ना पिए, खाए ना खाए, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन आप खुद को हाइड्रेटेड जरूर रखें, ये बात मैं बार बार रीएम्फेसिस करती हूँ. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची मॉर्निंग्स, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
0: बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. पेपॉन एंड सुनिधि की आवाज, लवली ट्रैक, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु. 89.6, 89.6. So here we go with this track, enjoy.

0: Nefret Mirci. İskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Nefret bana burga.
1: Mirci, burga. Aga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ। आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ। जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहले आ रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
4: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
3: अभी कॉल करें 3100-0813। हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाउ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: नौटियाल की पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. लेकिन ना यार, इस वक्त हम जो है लुटने की बात तो बिल्कुल ना करेंगे. लुटते तो हम सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार में. इस वक्त तो वैसे हम माला माल हो रहे हैं.
1: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Finally, जब ये पता हो कि अकाउंट जो है लालम लाल हो चुका है तो दिल जो है खुशी से मालम माल ना हो तो फिर क्या ही हो. एंड एक्सचेंज के रेट्स जो है वो भी काफी अच्छे हैं. मौका भी है, दस्तूर भी नहीं. अनलेस एंड अंटिल दिन में ख्याल है कि इस वक्त पार्टी शार्टी करनी है तो बात अलग है. बिल्कुल आप ऑर्गेनाइज करें, अरेंज करें. मिर्ची की पर्टन को लेकर मैं जरूर पहुंचूंगी एंड फिर जो बचे हुए पैसे होंगे उसे फटाफट से ट्रांसफर करने की तैयारी करेंगे. आई पे मनी में आज क्या भौकाल है जरा देखें. वेल, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.96. इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.81. बांग्लादेशी टाका 33.68. इस वक्त अगर कोई सॉलिड मचा रहा है तो भैया वो है एक्सचेंज रेट फॉर श्रीलंकन रुपीज 90.41 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज है 41.85 पर. तो फटाफट से घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए एक ही काम करना है, टिक के बने रहना है, सुनते रहना है का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट बद्दी का नाम अंशु. एंजॉय.

0: अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, क्या सूदिंग सा गाना है। वैसे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफी सूदिंग ये भी रहा। Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. एक बार फिर से exciting अगर कोई experience रहा तो वो है कल का। कल का कुछ इस तरह से, जब बेंगलुरु की टीम ने एक शानदार जीत हासिल की एंड बैक टू बैक इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। यार कुल मिलाकर 18 साल के बाद जब पिछली बार RCB के नाम IPL की ट्रॉफी आई थी ना, तो ऐसा लगा था जैसे अरसों का इंतजार, बरसों का इंतजार जो है ना वो पूरा हुआ। एंड उसकी जो नमी थी, उसकी जो खुशी थी, हर किसी की आंखों में कुछ इस तरह से झलक रही थी कि शायद उस दर्द को भी और उस खुशी को भी शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। तो पिछली बार जब RCB की टीम ने इस ट्रॉफी को अपने नाम की तो ये उनकी चाह थी, यू नो, ये उनकी शिद्दत थी, ये उनकी दिल की ख्वाहिश थी। लेकिन इस बार जब उसी ट्रॉफी को एक बार फिर से उन्होंने अपने नाम किया तो इस बार ये बनी इनकी आदत। वेल, खुशी तो इस बार भी थी, अपरंपार भी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बस RCB की जिंदगी में अगर कोई कहानी रिपीट हुई तो बस इसी तरह से हुई। NSC के साथ पाटीदार कहते हैं ना कि उन कैप्टन्स की लिस्ट में शामिल हुए जिन्होंने दिखाया कि भैया कैप्टेंसी मैं सिर्फ करना नहीं जानता, कैप्टेंसी को मैं दिल से निभाकर अपनी टीम को जीत तक पहुंचाना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। विराट का वो विराट वाला परफॉर्मेंस, टीम के हर एक मेंबर की दिल की वो खुशी। भाई बेंगलुरु के फैंस इस वक्त मेरे साथ अगर कनेक्टेड है, बधाई जी, लग बधाई। एंड यार मुझे एक थैंक यू मैसेज तो कर दो, क्या बात है, अकेले सेलिब्रेट करूं एक आ तक सही। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। अर्ज किया है
1: इरशाद।

0: Akshay Kumar.
1: Namaskar, main hoon Amitabh Bachchan.
2: Hi everybody, main hoon Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Salman Khan. Khan.
4: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे?
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
4: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
4: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कदर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. And अगर आज की सुबह की बात करूँ तो ये सुबह जो एक खास पैगाम हमारे बीच लेकर आई है, एक नई दास्तां हमारे बीच पेश करना ही चाह रही है। एक नया महीना, एक नया चैप्टर तो आज खुलने जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ है जो खासकर बंद भी होने जा रहा है। वेल, इस वक्त अगर मैं ओपन स्पेसेस में आउटडोर काम की बात करूँ सुबह 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तो बस आज से उस पर लग रहा है बैन। कहने का मतलब ये कि भैया बढ़ती गर्मी, इस चिलचिलाती हुई गर्मी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से वो मुहिम आ चुकी है जो ये साफ कह रही है कि कोई भी आउटडोर वर्क जो है अब सितंबर 10th ऑफ सितंबर तक बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट इट इज अंटिल 15th ऑफ सितंबर, सुबह 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कोई ओपन स्पेस में काम नहीं, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं। ये बात जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी एंड इम्पॉर्टेंट है। भाई साहब, कतर की गर्मी को अगर आप देखें भैया, मतलब ये जितनी भी बातें हमारे घर वाले हमसे किया करते थे ना कि तुम्हें तो गैस चूल्हे की जरूरत ही ना पड़ती होगी, ऑमलेट तो बस ऐसे ही बन जाता होगा, हम क्या ही बताएं, ऑमलेट तो बाद में बनता है, जरा 10 मिनट बाहर खड़े होकर देखो इंसान की भुर्जी कैसे बनती है। ये बात आपको जरूर पता चलेगी। बहुत ख्याल रखें, खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड रखें, लेकिन कलेजन दबा के ठंडक के लिए ही काम करना है। अरे यार, मेरी आवाज सुनना है, ओनली ऑन कतर नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन पर। It's hot. And अगर सुन रहे हो कनेक्टेड हो यार, एक गुड मॉर्निंग मैसेज तो भेज दो। बड़ी गलत बात है कि मैं इकलौती बात करूँ ना आप पलट के जवाब ना दो। 5000 1896 5000 1896, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस। अगला गाना सुनते हैं, घंटे के उस पार एक बार फिर से आपकी जिंदगी में कोई तो कॉन्टेस्ट लेकर आऊंगी। बंदी का राम अंशु।

Well, DC Boys फिल्म का नाम है सुपर पावर पैक्ड गाना सुबह होने ना दे भाई सुबह हो गई मामू मामू

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
2: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
1: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: खट खट।
4: Who there?
3: बनता।
4: बनता who?
3: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
4: खट खट। Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: Well, Vishal Didlani ki power pack awaaz Shah Malik Khulgadi ka saath, and what a gazab gana hai Razia from the film Ye Jawani Hai Diwani. Well, ye gana to maine aapko suna diya, lekin itna bhi bata dun agar late ho rahe to zara jaldi kare. I mean, mirchi ghadi mein baj chuke hain 9:06.
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: भाई साहब देखिए, बात इतनी है, अभी मौका भी है और दस्तूर भी, कहीं दोनों हाथ से निकल ना जाए।
2: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is Ajay Anshu with you. यार पता है क्या, मैं कभी कभी अपनी लाइफ को देखने की कोशिश करूँ तो ऐसा लगता है कि माना कि मैं अपने घर पे बिजी हूँ, माना कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन पे मैं उलझी हुई हूँ, माना कि मैं ऑफिस में काम करने भी आती हूँ, यू नो बहुत सारी बातें हैं। ये सब चीज़ों के बीच कभी कभी ना हम लाइफ में ये भूल जाते हैं कि जितने भी रोल्स हम निभाते हैं, जितने भी काम हम करते हैं, उन सब के बीच हमारी भी एक अपनी लाइफ है। जब दिल में एक बात आती है कि क्यों ना यार अपने लिए भी कुछ किया जाए, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैंने यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, कहीं ना कभी आप सबके दिल में ये ख्याल आया होगा या आज भी आता है। हविंग सेड दैट, जितनी भी लेडीज इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर आपके दिल में ये ख्याल आता है, एज अ मॉम आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई, एज अ वाइफ भी आपने बहुत अच्छा काम किया, ऑफिस में भी आप बहुत अच्छा काम करती हैं हर जगह, लेकिन क्यों ना उन मॉमीज को एक बार सुपर मॉमी बनाने की तैयारी जो है वो हम कर लें। देखिए यार, मिर्ची जब भी कोई इवेंट लेकर आता है ना, तो हमारा प्राइम पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि हमें आपसे मिलने का मौका मिले, बल्कि हमारा रीज़न ये भी होता है कि कहीं ना कहीं हम आपकी लाइफ में किसी तरह से एक वैल्यू एडिशन कर पाएं। अगर हम मिर्ची मॉमी की बात करें, ये हमारा 5th एडिशन है, अभी तक का हमारा सबसे बड़ा एंड ग्रैंड एडिशन होने वाला है। यानी यार ये पर्पस जो है ना मिर्ची मॉमी अवार्ड्स का बहुत अलग है कि मॉमीज के अंदर मौजूद वो जो क्वीन है, जो कहीं ना कहीं शायद डे टू डे लाइफ के काम में खोसी जाती है, क्यों ना उन्हें वो महसूस कराने का हम एक मौका दें, वो एक प्लेटफॉर्म दे। हर एक औरत ना कहीं क्वीन एक रानी जरूर होती है, इसीलिए तो ये जो एक सुपर पावर इन्हें मिला है ये शायद किसी और के पास है ही नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर की उस रानी को एक बार फिर से भाई साहब उस रेड कार्पेट पे निकालना है, सो दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऑल यू नीड टू डू इज टू फटाफट से शेयर अ वीडियो ऑफ योर्स विद योर किड डिपिक्टिंग दिस ब्यूटीफुल बॉर्न दैट यू कैरी। एक वीडियो बनाइए एक मिनट तक का, इट कुड बी एनीथिंग, एनी फनी रील, एनी इमोशनल रील, कुछ भी हो सकता है, भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर विच इज 5000 1896 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर, एंड अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको ऑडिशंस पे बुलाया जाएगा। ऑडिशंस पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो ग्रैंड फिनाले में ना ही सिर्फ आपको मौका मिलेगा कि आप रेड कार्पेट पे वॉक कर सकें, उस क्राउन को अपने सर पे सजा सकें, लेकिन ढेर सारी मॉमीज के साथ मिलकर अच्छी यादें भी बनाएं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी आर वेटिंग फॉर योर एंट्रीज, एंड द रेड कार्पेट इज इवेंचुअली वेटिंग फॉर यू। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। एंजॉय
1: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi. Iscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
1: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
2: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
1: हेलो
2: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
1: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
2: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
1: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
2: हैं मोबाइल पे
1: और क्या?
2: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
1: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
1: आपको बताना चाहिए था ना
2: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
1: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
2: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
1: आपका दिमाग खराब,
2: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
1: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
2: नवेद लिखिए, नवेद
1: आ रही है।
3: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कम है के?
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

दर्शन रावल की खूबसूरत सी आवाज, रोचक कोहली का साथ, जॉनिता गांधी का वो मैजिक एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म धड़क 2। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन प्रीत की बात करूँ तो इस धुन से कहीं ना कहीं आपको प्रीत जो है वो जरूर हुई होगी। दिन का सबसे फेवरेट सेगमेंट जो है वो मेरा आ ही चुका है। यार पता है क्या, मुझे ना फिल्मों में गाने पसंद है, फिल्म की स्टोरीज पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा कनेक्ट अगर मुझसे कुछ करता है या कोई चीज जो हमेशा मेरे जहन पे रह जाती है तो वो है धुन, जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। समहाउ दैट रियली फैसिनेट्स मी। एंड कई दफा तो ऐसा होता है कि बस लूप में मैं कोई बहुत ही खूबसूरत सी धुन लगा के छोड़ देती हूँ ना, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, बड़ा मजा आता है मुझे। तो बस ऐसी कोई धुन है, ऐसी किसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ। आप इस धुन को सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड मुझे ये बताएंगे कि ये है तो है किस फिल्म से। एंड सच कहूँ यार, आप सच्चे बॉलीवुड लवर हो, फिल्में देखना पसंद है, तो ये नामुमकिन है कि आप इससे आइडेंटिफाई ना कर पाओ। एंड अगर आइडेंटिफाई कर लिया, नॉस्टैल्जिया में आपने फिर से डाइव इन कर दिया, फटाफट से अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर आप मुझे करेक्ट आंसर भेजेंगे कहाँ, 5000-1896 we will get connected there. Instagram Mirchi One Kataria Mirchi Anshu 5000-1896 here you go.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: दोस्ती का कुछ मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: पवन सिंह की आवाज सुमरन चौधरी का सांतन, व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज। लेकिन किसने कहा मैं आई नहीं, अरे तुमने पुकारा और हम चले आए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Mirchi Mornings and this is RJ Anshu with you. Well, एक बात बताऊँ, बचपन के दिनों में ना सबसे fascinating activity जो मैंने बहुत कोशिश की try करने की लेकिन कभी successful नहीं हो पाई, वो है सीटी मारना। हाँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आता था जब मैं अपने cousins को देखती थी, अपने भाई बहन को देखती थी कि कुछ different तरह के sounds जो है ना वो whistle के जरिए निकालने की कोशिश करते थे। And I tried my level best कि मैं भी ऐसी कोई चीज़ copy कर पाऊँ, लेकिन ना, ये ना हो पाया हमसे। लेकिन यार वसल किंग की बात करें भाई, तो हमारे दिल में राज करने वाले हीरो तो बस यही बने जिन्होंने एक खास फिल्म में इतने खास अंदाज में अपनी वसल पेश की कि हाय वो हमेशा के लिए ना एक सुरीली सी धुन के तौर पे हमारे जहन में बैठी गई। अभी कौन सी है ये तो आप बताएंगे। अब से कुछ देर पहले आपके बीच पेश की थी मैंने एक स्पेशल सी वसल ट्यून, आपको सुनना था, आइडेंटिफाई करना था, मुझे बस ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड, मैं एक बार फिर से सुनाती हूँ, अभी भी आइडेंटिफाई कर पाए तो फटाफट से करेक्ट आंसर भेज देना 5000 1896 पर 5000 1896 एंड हियर वी गो।

0: राइट यू, अब जरा देखें लोग बाग का क्या कहना है। ये है तो है किस फिल्म से?
1: सुनील, ये शाहरुख खान का मूवी है, इसमें रानी मुखर्जी, काजोल और सलमान खान है। यश करण जौहर का पिक्चर है, डायरेक्शन है, लेकिन मूवी का नाम मेरे दिमाग से उतर गया है।
0: क्या बात है जी, क्या बात, मतलब पूरा का पूरा स्टार कास्ट बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन हाँ इंग्रेडिएंट्स पता है लेकिन डिश को क्या कहते हैं यही नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वह लेकिन रिप्लाई आए, बहुत सारे रिप्लाई आए, मैक्सिमम लोगों ने लिखकर भेजा है। यूसुफ थैंक यू सो वेरी मच, शबीब थैंक यू सो मच, इम्पा थैंक यू, एंड टू ऑल द वंडरफुल पीपल जिन्होंने कहा इस फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। हाय बहुत कुछ होता है, आपके लिए तालियां हो जाएं। वेल 16th of October 1998 वो दिन था जब बॉलीवुड को मिली एक ऐसी फिल्म जिसने प्यार, दोस्ती और इमोशंस को एक नई पहचान दी। कुछ कुछ होता है। इट वॉज डायरेक्टेड बाय करण जौहर इन हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू एंड प्रोड्यूस बाय हिज फादर यश जौहर। एंड इस फिल्म में अगर हमें कोई नजर आए तो वो है रोमांस किंग यानी कि शाहरुख खान, साथ ही बेहद खूबसूरत काजोल एंड रानी मुखर्जी, एंड अ स्पेशल अपियरेंस बाय सलमान खान। इस फिल्म का म्यूजिक जो है सुपर हिट बना, जतन ललित की कॉम्पोजिशन रही। लेकिन आपको पता है इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक पार्ट क्या रहा? That was the whistle. हर बार शाहरुख खान जब वो whistle बजाते हुए आते थे तो दिल में कहीं ना कहीं कुछ कुछ जरूर होता था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये magical tune actually perform किसने की? Well, that is by legendary Bollywood whistler and I'm talking about Nagesh Surve. बिल्कुल ठीक सुना आपने, नागेश सुरवे को whistle king of Bollywood भी कहा जाता है। And उनकी हर एक whistle इतनी iconic रही, चाहे वो दिल तो पागल वाली whistle भी आप याद क्यों ना कर ले, कि भाई एवरी टाइम यू लिसन टू हिम आप जो है ना ऑटोमेटिकली राहुल के एरा में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। राहुल यानी कि शाहरुख खान। वेल चलिए अब एक काम करते हैं, आपको इस फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गाना मैं सुनाई दूं, अगर दिल करे तो क्या कहते हैं वो टाइटल ट्रैक ही हो जाए, क्या कहती पब्लिक। सो हियर वी गो, एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट।

वो शाल मशरा की खूबसूरत सी आवाज़ एंड हाई कशश कश अगर किसी को कहते हैं ना तो बस उस आवाज़ को कहते हैं। चलिए ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कुछ खास बात इस वक्त आपके बीच पेश कर दी जाए। वक्त निकलते पता ही नहीं चलता है ना, जरा देखिए देखते देखते एक नया चैप्टर आज हमने शुरू कर ही दिया। टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जून, वाले एक बार फिर से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। वाले इतना ही कहना चाहूंगी यार, जो भी करो दिल से करो, बड़ी अच्छी तरह से करो। काम करना जरूरी है, लेकिन जिंदगी को जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो इंश्योर करें कि आप जो भी करते हैं वो आपकी लाइफ का सिर्फ पर्पस ना हो, आपकी लाइफ का सिर्फ मिशन ना हो, आपका वो पैशन भी हो, दिल से आपको वो काम करते हुए खुशी हो। तो दो चीज़ें, अगर काम करते हुए खुशी ना हो रही भैया, सेकंड ऑप्शन देखने का वक्त आ चला है। अगर लगे कि सेकंड ऑप्शन नहीं है तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे ही दिल से अपना कर, क्यों ना एंजॉय करते हुए करें। एंड इसके साथ ही आज जो है घर जाके अच्छी वाली रोटियां खा लो, पर कल तो 2 जून की रोटी खाएंगे। अच्छी 2 जून 2 जून की रोटी। चलो जाने से पहले आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ। हिंदी का ये

मुहावरा दो जून की रोटी, इसका मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा ना कभी ना कभी, तो दो जून की रोटी का असल मतलब क्या होता है? ये ना कह देना अंशु, जो सेकेंड जून को रोटी खाई जाती है उसे दो जून को कहते हैं। दो जून की रोटी का मतलब मुझे बताएं। 5000 1896 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। मीनवाइल टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट बंदी का नाम अंशु। अपकमिंग नेक्स्ट अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज़ राबता, आपका और मेरा है ना, तो ये गाना भी सुना देते हैं। एंजॉय।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
2: नाना पाटेकर कैटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
5: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
6: खट खट, हू देयर? अगर कर,
7: अगर कर हू,
6: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
7: खट खट, हू देयर?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know, she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो, शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल

0: अंदर का बच्चा ना काफी ज्यादा खुश है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड कोई बहुत ही होलसम सी चीज आप देख लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो आपके अंदर ये वाली फीलिंग आई जाती है यार। एंड दिस हैपेंड आफ्टर आई वॉच्ड द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, जैकी श्रॉफ स्टार है, जिसमें वो एक दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर ओवरव्यू में बताऊं तो यहाँ पे ना दोनों ही, दादाजी और उनके पोताजी जो है, दोनों ही अल्टीमेट लेवल के कहानीकार हैं। दादाजी अलग कहानियां सुना रहे हैं अपने पोता को, और वो पोता जो है अपने स्कूल में जाके अलग लेवल की कहानियां कर रहा है। अब देखो, इस कहानी को मैं एक्सप्लेन करने लगूंगी तो सारी मूवी रिवील हो जाएगी, बट एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहती हूं इज कि आपके अंदर का बच्चा जरूर खुश हो जाएगा जब आप ये फिल्म देखने जाएंगे तो, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे होलसम मोमेंट्स हैं। वो प्यार इश्क मोहब्बत को लेकर हो, फैमिली को लेकर हो, वो दादा पोते के रिलेशन को लेकर हो, या फिर पोते के अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन को लेकर हो। एंड द मैसेज दैट द मूवी इज ट्राइंग टू गिव कि भाई एलियन अटैक हो जाएगा अगर हमने अपनी पृथ्वी की रिस्पेक्ट करनी शुरू नहीं की तो, इस तरीके से जो हम पेड़ काटे जा रहे हैं, हवा पानी सब कुछ गंदा किए जा रहे हैं, इट्स हाई टाइम वी एक्चुअली टेक केयर ऑफ आर अर्थ, अदरवाइज एलियन अटैक्स होंगे और फिर हमें बचाने के लिए सच में कोई ग्रेट ग्रैंड सुपर दादा नहीं आ पाएंगे। सो ऑल इन ऑल, अगर आपके घर में बच्चे हैं देन इट इज डेफिनेटली अ मस्ट वॉच फॉर यू, वरना अगर अपने अंदर के बच्चे को जगाना चाहते हो तो भी जाके देख सकते हो फिल्म। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskaba la puskaba na sakaba na. Burga, burga. Burga. La vizba la burga.
1: Mirci, burga. हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा? मैंने तो बस सूचित करना था, करना, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
2: पकड़ ले,
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। संजय गुप्ता और संजय दत्त एक बार फिर से कोलैबोरेट करने वाले हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट डायरेक्टर संजय गुप्ता, जिन्होंने मुसाफिर, जंग, खौफ, कांटे, जिंदा, दस कहानियां, अलीबाग, ऐसे ऐसी फिल्में बनाई हैं विद संजय दत्त, और इन दोनों का पैर जो है एक बार फिर से साथ काम करने को तैयार है। सो बेसिकली कांटे मूवी आपको याद होगी, इस मूवी का सीक्वल बन रहा है एंड रिपोर्ट्स हैव इट दैट इस मूवी की स्टोरी क्रैक कर ली गई है एंड इट इज एट अ वेरी बेस्ड लेवल राइट नाउ। बट डेफिनेटली द ऑडियंस इज एक्साइटेड क्योंकि ये 11th टाइम होगा जब संजय गुप्ता और संजय दत्त साथ काम करेंगे। बंदर का पिंजरा, अरे अरे, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। मैं बात कर रही हूँ बॉबी देओल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बंदर, जिसका गाना रिलीज हुआ है एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज पिंजरा। द सॉन्ग फीचर्स बॉबी देओल एंड राजवीर शेट्टी, जिसमें बॉबी देओल एक इमोशनल टर्मोइल के थ्रू जाते नजर आ रहे हैं। बाकी टॉकिंग अबाउट दिस अनुराग कश्यप डायरेक्टोरियल, ये रिलीज होने वाली है 5th of June को, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। 136 मिनट के रन टाइम के साथ CBFC की तरफ से क्लियर हो चुकी है जवानी तो इश्क होना है। वेल, नॉट टू मेंशन ये मूवी डेविड धवन की लास्ट डायरेक्टोरियल होगी, जिसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल्स निभाते नजर आ रही हैं। वेल, द मूवी सेट टू रिलीज ऑन द 5th of June, जिसको CBFC ने UA रेटिंग के साथ पास किया है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: खेलो मगर प्यार से।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
1: भाई, मेरी इस बात से तो आपको अब तक पता चल चुका होगा। यस, दैट इट्स टाइम फॉर फाइंडिंग मिर्ची फिल्म ची, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करने के लिए, देन आई कॉल यू, और उसके बाद हम एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं जिसका जवाब देने पे आप बन जाते हैं मिर्ची फिल्म ची। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है जीशान, तो आर यू रेडी?
4: यस बिल्कुल।
1: ओके, मेरा पहला सवाल है, प्रियंका चोपड़ा की वो कौन सी फिल्म है जिसमें सुपर हीरो होता है?
4: क्रिश।
1: ग्रेट। क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है?
4: किसकी शक्तियों का? क्रिश
1: हीरो का नाम
4: होता है, हीरो का नाम ऋतिक रोशन।
1: ऋतिक रोशन किस फिल्म में एयरफोर्स पायलट बने हैं?
4: फाइटर्स।
1: ग्रेट। फाइटर की फीमेल लीड का नाम क्या है?
4: दीपिका।
1: ग्रेट। दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है डांस करना एक आर्ट होता है, आर्ट?
4: हैप्पी न्यू ईयर।
1: हाँ जी, हैप्पी न्यू ईयर का कौन सा एक्टर आर राजकुमार में विलन बना है?
4: सोनू सूद।
1: ऑसम। सोनू सूद किस एक्शन कॉमेडी में किंग बने हैं?
4: सिंग इज किंग।
1: ग्रेट। सिंग इज किंग में हैप्पी का रोल किसने किया है?
4: अक्षय कुमार।
1: अक्षय कुमार किस फिल्म में गुलाब खत्री बनते हैं?
4: आवारा पागल दीवाना।
1: आवारा पागल दीवाना में भूलने की बीमारी किसको होती है?
4: परेश रावल।
1: ग्रेट।
4: परेश रावल।
1: परेश रावल किस फिल्म में बाबू राव बनते हैं?
4: हेरा फेरी।
1: हेरा फेरी में लड़की का चक्कर किसका होता है?
4: सुनील शेट्टी।
1: सुनील शेट्टी की फिल्म जिसमें अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ये किसमें है?
4: धड़कन।
1: धड़कन में अंजलि कौन है?
4: शिल्पा शेट्टी।
1: शिल्पा शेट्टी का शट अप एंड बाउंस सॉन्ग किस मूवी में है?
4: जॉन अब्राहम की व्हाट मूवी इज दैट वेयर ही हैज शोन हिज द वेस्टलाइन, शट अप एंड डांस बेबी डांस, बैकी बैकी सी बातें, आई नो दैट।
1: कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इस चेन को ब्रेक करते हैं, इसके आगे का चेन में भी कोई कंप्लीट कर पाए। बट जो आपने लोगों को हिंट दी है कि इस मूवी में जॉन अब्राहम ने अपनी वेस्ट लाइन दिखाई थी, दैट वाज रियली ग्रेट। तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं मेरे साथ, तो यू नो द ड्रिल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Akbar.
6: Akbar who?
5: अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: भाई जिंदगी के बोरिंग गेम्स को साइडलाइन करके जरा मिर्ची फिल्मची खेलते हैं।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड लाइक ऑलवेज आई एम फाइंडिंग अ मिर्ची फिल्मची, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो गो टू माय डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड सेंड योर नंबर, ताकि मैं आपको कॉल करके ये सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछूं, और आप अगर सही सही जवाब दें तो आपको ये वाला टैग मिल जाए। तो सबसे पहले ये गेम हमारे साथ शुरू किया जीशान ने आज। अब उस गेम को कम्प्लीट करने के लिए हमारे साथ है दीपक जी। तो मैं आपके लिए एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। शिल्पा शेट्टी का शट अप एंड बाउंस गाना किस फिल्म में है?
2: दोस्ताना
0: में देसी गर्ल कौन है?
2: प्रियंका।
0: प्रियंका चोपड़ा ने झिलमिल का रोल किस फिल्म में किया है?
2: ये बर्फी।
0: बर्फी में हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड कैरेक्टर किसका है?
2: रणबीर कपूर
0: पापा पगलू किस फिल्म में बने हैं?
2: एनिमल
0: में हिक्की के कलर की गाड़ी किसको मिलती है?
2: कौन से कलर की?
0: जो लव बाइट है, लव बाइट के कलर की गाड़ी किसको मिलती है? तृप्ति डिमरी के हनीमून की सीडी किस फिल्म में खो जाती है?
2: तो राजकुमार राव के साथ विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।
0: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में तृप्ति के हस्बैंड कौन है?
2: राजकुमार राव
0: टेलर किस फिल्म में बने हैं?
2: स्त्री।
0: क्या बात है। तो भाई ये तो डिक्लेयर होता जा रहा है थ्रू माय शो कि हिंदुस्तान का हर दूसरा इंसान हार्डकोर फिल्मची है, क्योंकि यार हम फिल्मों के इर्द गिर्द ही पले बड़े होते हैं। वेल, अब अगला मिर्ची फिल्मची कल ढूंढूंगी, बट अभी के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

0: He is the master of violence, crime and thrill.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं अनुराग कश्यप की बात कर रही हूँ. मतलब इनकी फिल्मोग्राफी ऐसी है कि इन्होंने एज अ प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, इनफैक्ट एज एन एक्टर भी काम किया है. और इनकी फिल्में ऐसी होती है ना कि ऑडियंस अपनी कुर्सी से हिलने तक का नाम ना ले जब तक उनकी फिल्म खत्म ना हो जाए. सो आज अनुराग कश्यप की कुछ 5 IMDb हाईली रेटेड फिल्मों की बात करूंगी. लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट द फिल्म ब्लैक फ्राइडे, जिसको 8.4 की रेटिंग मिल रखी है. वेल द मूवी फॉलोज आफ्टर द 1993 सीरियल बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, जो बेस्ड है हुसैन जैदी की किताब ब्लैक फ्राइडे द ट्रू स्टोरी ऑफ द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से, जिसमें के मेनन से लेकर गजराज राव, इनफैक्ट इम्तियाज अली के अमेजिंग परफॉर्मेंसेज हैं. वेल अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन वन ऑफ अनुराग कश्यप्स मास्टरपीसेस. आज के आज बिंज वॉच लिस्ट में डालो इस फिल्म को और थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि अनुराग की कुछ और 4 ऐसी ही फिल्मों की बात करनी बाकी है. ऑल ऑफ दैट राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी. इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
2: हाँ।
3: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
4: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
2: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
2: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
2: हाँ जी, 1st September 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
2: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
2: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
4: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
2: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
2: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
2: सर
5: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
2: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
2: पिटोगे,
5: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पटाक
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
9: दोनों मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
11: 89.6
12: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: वायलेंस क्राइम और थ्रिल के बेताज बादशाह हैं ये।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बात कर रही हूँ यार, आप किसी एक्टर को ही हमेशा दिमाग में क्यों लेकर आते हो भाई? मूवी बनाने वाले भी इम्पोर्टेंट हैं, और आज अनुराग कश्यप की कुछ अमेजिंग फिल्मों की डिस्कशन कर रही हूँ, स्पेसिफिकली IMDb हाईली रेटेड फिल्म्स ऑफ हिज। सो लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द फिल्म ब्लैक फ्राइडे, जो साल 2004 में आई थी, और इस फिल्म को 8.4 की रेटिंग मिल रखी है। वहीं अब नंबर टू पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, एंड दैट इज गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ, इस मूवी को 8.2 की रेटिंग मिल रखी है। वैसे ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई, बट द फैक्ट इज कि ये एक फिल्म तैयार हुई थी लगभग 5 घंटे की, जिसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सो यार, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो एक कल्ट क्लासिक है, इसने हमें बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर्स दिए, जैसे सरदार खान, फैजल खान, परपेंडिकुलर, और भी बहुत सारे इनफैक्ट। एंड बेस्ड ऑन द कोल माफिया ऑफ धनबाद, ये फिल्म रिवॉल्व करती है तीन फैमिलीज के बीच पावर, पॉलिटिक्स एंड बदले की आग की भावना को लेकर। खैर, आई एम श्योर आपने ये मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज प्लीज प्लीज देख लो यार। मतलब आई वॉज ऑल्सो मिसिंग आउट ऑन इट जब तक मैंने ये फिल्म देखी नहीं, सच्ची बता रही हूँ। मूविंग ऑन, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म गुलाल, जिसको IMDb पे 8 की रेटिंग मिल रखी है। वेल, द मूवी इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं, एंड थिंग्स टेक अ डिफरेंट टर्न जब एक जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपने आंखों के सामने डिसेप्शन, होमसाइड और बहुत सारा क्राइम होते हुए देखता है। फिर क्या होता है, वही ट्विस्ट एंड टर्न के साथ फिल्म गुलाल आई थी। सो या, अपनी बिंज वॉच लिस्ट में इस बार आप अनुराग कश्यप की एक स्पेशल लिस्ट बना सकते हो, उसमें हेल्प तो मैं आपको कर ही रही हूं। अभी और दो फिल्मों की बात बाकी है, बट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: इनका काम काम नहीं, आर्ट है, आर्ट।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल, मैं अनुराग कश्यप की कर रही हूँ बात, जिनकी फिल्मोग्राफी देखे तो उन्होंने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, इनफैक्ट एक्टर का भी काम कर लिया है। सो आज उनकी कुछ 5 IMDb हाईली रेटेड फिल्मों की बात कर रही हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज द किंग ऑफ क्राइम, वायलेंस एंड थ्रिल। और इन सारी चीजों को एकदम रॉ तरीके से प्रस्तुत करके भी हर इंसान का अटेंशन ले जाते हैं ये। तो चलो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और नंबर 4 पे बात करते हैं इनकी फिल्म मुक्काबाज के बारे में, जिसको IMDb 8 की रेटिंग मिल रखी है। Well, this movie is not just any other sports film. श्रवण सिंह और भगवान दास मिश्रा की कहानी के थ्रू मूवी करप्शन, नेपोटिज्म और कास्टिज्म को एक बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करती है, टू द फोर फ्रंट वेन पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स आर मिंगल्ड टूगेदर। मूविंग ऑन लिस्ट में नंबर 5 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म देवडी, जिसको IMDb 7.9 की रेटिंग मिल रखी है। वेल, दिस मूवी इज अनुराग कश्यप टेक ऑन द बंगाली नॉवल देवदास, जिसके ऊपर अलग अलग फिल्में भी बनी हैं। बट इनकी कहानी में जो फिल्म है ना, वो हमें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ले जाता है। मतलब तीनों कैरेक्टर्स जो हैं, उन तीनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन देयर लाइव्स। सो या, आज के 5 का पंच की लिस्ट में अनुराग कश्यप की ये 5 फिल्में मेरी फेवरेट वाली हैं। अगर आप चाहो तो आप भी अपनी फेवरेट्स मुझे बता सकते हो। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स ऑन।

0: Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
3: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
2: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
4: Aray, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who there?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची ट्रेंडिंग। संजय गुप्ता और संजय दत्त एक बार फिर से कोलैबोरेट करने वाले हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट डायरेक्टर संजय गुप्ता, जिन्होंने मुसाफिर, जंग, खौफ, कांटे, जिंदा, दस कहानियां, अलीबाग, ऐसे ऐसी फिल्में बनाई हैं विद संजय दत्त, और इन दोनों का पैर जो है एक बार फिर से साथ काम करने को तैयार है। सो बेसिकली कांटे मूवी आपको याद होगी, इस मूवी का सीक्वल बन रहा है एंड रिपोर्ट्स हैव इट दैट इस मूवी की स्टोरी क्रैक कर ली गई है एंड इट इज एट अ वेरी बेस्ड लेवल राइट नाउ। बट डेफिनेटली द ऑडियंस इज एक्साइटेड क्योंकि ये 11th टाइम होगा जब संजय गुप्ता और संजय दत्त साथ काम करेंगे। बंदर का पिंजरा, अरे अरे, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। मैं बात कर रही हूँ बॉबी देओल की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बंदर, जिसका गाना रिलीज हुआ है एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग इज पिंजरा। The song features Bobby Deol and Rajbir Shetty, जिसमें Bobby Deol एक emotional turmoil के through जाते नजर आ रहे हैं। बाकी talking about this Anurag Kashyap directorial, ये release होने वाली है 5th of June को, so you better mark your calendars for this one। 136 मिनट के रन टाइम के साथ CBFC की तरफ से क्लियर हो चुकी है जवानी तो इश्क होना है। वेल, नॉट टू मेंशन ये मूवी डेविड धवन की लास्ट डायरेक्टोरियल होगी, जिसमें वरुण धवन के साथ मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े लीड रोल्स निभाते नजर आ रही हैं। वेल, द मूवी सेट टू रिलीज ऑन द 5th ऑफ जून, जिसको CBFC ने UA रेटिंग के साथ पास किया है। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: भाई हमसे ज्यादा ड्रामे तो दरअसल इनके हैं।
1: मिर्ची अंशु
0: वेलकम बैक टू कतल्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। मतलब अगर ड्रामे की बात करूं तो इस वक्त सूरज चाचू हमारी जिंदगी में जितना ड्रामा लेकर आए ना शायद ही कोई और लेकर आए हो। जरा देखे ना हर वक्त इनका ये जो मूड है ये कितना अलग अलग होता है। अगर सुबह देखने की कोशिश करें तो लगता है भाई चलो मैनेजेबल है, लेकिन जैसे ही दोपहर आती है कहीं ना कहीं इनका ओवर टाइम पूरी तरह से शुरू हो चुका होता है। हैविंग सेड दैट शाम के वक्त इस वक्त भी कहीं ना कहीं हमारे कलेजे को ठंडक जो है ना मिल ही रही है, लेकिन ऑफिशियली अब हमारी जिंदगी में वो सीजन आ चुका है या वो महीना आ चुका है जब वेदर फोरकास्ट से ज्यादा अगर आप किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो है एसी का रिमोट। एक बात बताओ, ये सिर्फ मैं ही हूं जिसे एसी का रिमोट नहीं मिलता, या आपके घर पे भी रबर बैंड एंड एसी के रिमोट ये दो चीजें ऐसी हैं जो अक्सर गायब होती रहती हैं? नहीं, मुझे ऐसा जरूर लगता है। वेल कुछ करें ना करें एक काम पे एक एरिया पे अपना ठौर ठिकाना ढूंढना जो ना जरूर शुरू कर दें, वो है कार की शेड वाली पार्किंग। भाई साहब कॉम्पिटिशन तो अब यहां शुरू होगा।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वैसे अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूं सो इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 44, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 33। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब सारा पानी जो है वो पीते रहें, सनस्क्रीन को बेस्ट फ्रेंड बना के रखें। कलेजे एंड दिमाग के ठंडक के लिए अंशु है ना स्टूडियो टेम्परेचर, बिंदी का नाम अंशु।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100-0813।

0: Milchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka.
1: Milchi, burka. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, एक तो परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
2: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू
1: कुकुड़।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अर्ज किया है
4: इरशाद, इरशाद।

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: भाई मेरे अंदर के फेमिनिस्ट को ऑफेंड कर दिया है इस सीरीज ने।
1: OTT एंड चिल।
0: मिर्ची पिटी उंडे नो, आप मैं हूँ आपके साथ श्रुति। एंड रिसेंटली आई स्टार्टेड वाचिंग देसी ब्लिंग, जो नेटफ्लिक्स पे फिलहाल स्ट्रीम कर रही है। 14 एपिसोड्स हैं इस सीरीज में एंड कसम से मैं चौथे पे ही एकदम सर पकड़ के बैठ गई थी कि भैया क्या हो क्या रहा है। सो इस सीरीज में आपको करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश लीड रोल्स में नजर आएंगे। बेसिकली ये दोनों दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और वहां अपनी जिंदगी सेटल करने के लिए वहां के टॉप नॉच लोगों से, मतलब अमीरों से मिल रहे हैं। और ये अमीर दिमाग से बहुत गरीब है भाई, क्योंकि यहाँ एक बिलियनर बिल्डर है जिसकी बीवी उसे रोज सुबह पैरों में मसाज करके ही उठाती है। क्यों? क्योंकि सरजी को लगता है कि अगर पत्नी पति का पैर दबाए डेली सुबह तो घर में बरकत होती है, लक्ष्मी आती है, तरक्की मिलती है। सो इन शॉर्ट मेरे हिसाब से इट इज अ टोटल ब्रेन रॉट। ऑल्दो मैं मजे के लिए सीरीज को देख रही हूँ ताकि लोगों को गालियां दे सकूं, बट जितने मेल शॉविनिस्ट्स हैं ना हमारी सोसाइटी में, दे वुड जस्ट एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। देसी ब्लिंग इज द नेम। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: आएंगे दीदी. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: कसम से इन दूसरी कैटेगरी वालों की हरकतें ना बड़ा गुस्सा दिलाती हैं।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और आज डिस्कस कर रही हूँ सामने वाले को ब्लॉक करने वाले इंसान के मद्देनजर। हाँ जी, जिसमें पहली कैटेगरी ऑफ पीपल आर सच, जिनको अगर सामने वाले पे गुस्सा आ गया, फॉर दैट मैटर अगर उनका कोई मैटर हो गया, तो फिर दे ब्लॉक ईच अदर, और उसके बाद फिर नो कॉन्टैक्ट, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी वाले लोग हैं, ओहो, उनको तो अलग लेवल के कीड़े ने काट रखा है, क्योंकि ये वो प्रजाति हैं जो सामने वाले से लड़ाई वड़ाई करके उनको ब्लॉक भले ही कर देंगे, लेकिन इनकी एक और आईडी होती है, उस दूसरी तीसरी आईडी से ये इस इंसान को मस्त स्टॉक करते हैं। कसम से बता रही हूं, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है ना, तो उसको ना अपनी जिंदगी में बहुत ही क्लोज रखिएगा, क्योंकि कल को किसी के ऊपर रेकी वेकी करने की नौबत आ जाए तो ये इंसान बहुत अच्छे लेवल पे डीप डाउन जाके अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालेगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
2: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
3: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
2: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
2: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
3: मैं मुझे नहीं पता।
2: हम साथ
3: कौन
2: साथ
3: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
2: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
3: ये भाई बहन थे। वेलकम।
1: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कौन है?
5: स्टेन।
4: स्टेन कौन?
5: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
6: खट खट, who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

आपको बात इतनी है, इसके में इतनी ताकत जरूर है कि अच्छे अच्छों को चुप करा सके एंड हाँ, शांत रहने वाले लोगों से बुलवा भी सके। भाई साहब, पैसे की ताकत की बात करूं और ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे जरा देखें कि आई पे मनी में आज का पैसा क्या ही बोलता है। अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.96, पाकिस्तानी रुपीज 76.81, बांग्लादेशी टाका 33.68, साथ ही लंदन रुपीज 90.41 एंड नेपाली रुपीज 41.85। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: स्कूल टाइम में दिस टाइम यूज्ड टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ माय लाइफ.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, ये time, बचपन में गर्मियों की छुट्टियों का time हुआ करता था यार. और हम इस time मेरा बचपन में नानी के घर पर ऐश किया करते थे. And you know, I realized this कि मुझे पिछले साल तक भी गर्मियां बहुत पसंद थी. And then I questioned myself कि ऐसा क्यों? कि गर्मियों में आम के अलावा ऐसा क्या खास है कि one would love this मौसम? और जवाब में अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि ये वो मौसम है जब हम गर्मियों की छुट्टियां enjoy किया करते थे. और तब से लेकर आज तक, just for the sake of nostalgia, I still liked summers until 2023, जब मेरी opinion बदली और मैं अपने आप से ये कह सकती हूँ कि अब मुझे सर्दियां ज्यादा पसंद है. चॉइसेस बदली हैं तो साथ ही साथ छुट्टियां भी तो बदली हैं यार. कुछ बड़े होने के साइड इफेक्ट्स के साथ अब गर्मियों की छुट्टियां ऑफिस जैसी जगह पर नहीं मिलती, और एक डेढ़ महीने की छुट्टियां तो डेफिनेटली एक साथ नहीं मिलती यार. तो आज क्या बोलते हो, मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गर्मियों की छुट्टियों में पार्क करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy. Escavana, buscavana, sacavana. Trabalha. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख खराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसमें था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है,
2: साहब जी को
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात कर रहा हूँ, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊँ
1: कैंसिल? मैं क्या जानू, उसे बनवाया था, उसे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था। मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़ ले
1: मेरे को, दिख रहा है यहाँ से मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पकड़ा।
3: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
4: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: पूरे साल ना मैं जब अपने घर पे रहा करती थी तो मैं बड़ी कॉशियस रहती थी कि ये मेरा तौलिया है, ये मेरा कंघा है, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में ये सब भूल जाया करती थी मैं।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों में ये ट्विस्ट लाइफ में आता था जहां एज अ किड आई यूज्ड टू गो इन माय शेयरिंग एंड केयरिंग जोन, क्योंकि हम इतने सारे कजिन्स एक साथ होते थे कि मेरा चल ही नहीं सकता था बॉस। खाना शेयर करना हो, बेड शेयर करना हो, या चीजें शेयर करनी हो, हम लोग ना सुबह तो एक बार नहाते ही थे, लेकिन एक बार शाम को फिर से नहाते थे और सब एक के बाद एक नहाया करते थे। और शाम को ना मैं ऊपर अपने रूम में जाने से बचने के लिए नीचे आंगन वाले बाथरूम में ही नहा लिया करती थी। और इस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि टॉवल जो है वो मुझे अपने रूम से लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने कजन का टॉवल शेयर कर लिया करती थी यार। एंड तब ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता था कि हाइजीन है, ओ ये मेरा टॉवल नहीं है। और इम्यूनिटी के साथ साथ ना यूनिटी भी बढ़ जाया करती थी। एक प्लेट में से एक साथ खाना खाना, सब कुछ एक साथ करना। नो वंडर हम वो जनरेशन है जिन्हें हम साथ साथ हैं और हम आपके हैं कौन टाइप मूवीज ना बहुत पसंद आती है, because we could connect with these films really well, hai ki nahi? Chalo ji, with this coming up the next track, you stay tuned with me Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara on Mirchi, it's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
0: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: गोला बर्फ याद है आपको?
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और कोई इसे चुस्की बुलाता है तो कोई गोला बर्फ। बुलाए हम इसे कुछ भी, लेकिन इसका स्वाद हर जगह सेम है, आइस एंड सिरप। मुझे याद है हम लोग दिन में जब सब बड़े सो जाया करते थे ना, तब एक डिश लेकर मुल्ला जी की दुकान पर जाया करते थे। और मुल्ला जी की दुकान एक छोटी सी दुकान थी, जो दुकान कम और खिड़की ज्यादा लगती थी, जहाँ उनकी बर्फ घिसने वाली लकड़ी की और लोहे की एक मैनुअल मशीन हुआ करती थी, जिस पर वो बर्फ घिसते और फिर हमारे चॉइस के रंग का शरबत उस पर डालकर गोला बर्फ बनाकर हमें दिया करते थे। हाय, आपसे बात करते करते ना ऑरेंज वाला जो गोला बर्फ था ना, उसका स्वाद आ गया। आपका कौन सा फेवरेट कलर था? क्योंकि बचपन में हम फ्लेवर कम और कलर ज्यादा बोला करते थे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood, Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Butt.
5: Butt? अरे butt हूँ.
4: Butt. Bike बहुत आवाज करती है.
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: गर्मियों की छुट्टियों में दिन में अगर कोई बच्चा सो जाता था ना, तो उसे फोमो ना हो ऐसा कैसे हो सकता था?
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों को याद करते हुए मुझे याद है कि कैसे गर्मियों की छुट्टियों में मैं मजाल है कि दिन में सो जाऊं। हम तो भाई रोज हॉल में सब इकट्ठे होकर कूलर के सामने कैरम खेला करते थे, और दिन का धूप वाला जो टाइम था ना, वो कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। यू नो, स्कूल टाइम में हमारे लिए जरूरी हो जाता था कि स्कूल से आने के बाद तो भाई हमें दिन में सोना ही सोना है, इतना थक जाते थे हम। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में पूरा दिन खेलते रहते थे, फिर भी नहीं थकते थे। आई वंडर नाउ कि स्कूल टाइम में थकान खेलने से होती थी या पढ़ने से। पढ़ाई करना मुझे इतना नापसंद था ना कि आज तक ये सवाल खड़े करती रहती हूँ मैं जगह जगह पर। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Fermici.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La viva la murga.
2: हेलो
3: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे
3: हैं? मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: हैं, मोबाइल पे?
2: और क्या,
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब।
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: यार इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई, अब इधर उधर कान भी लगा लेते हैं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड अब बारी हो चुकी है मान ना मान करो गानों की पहचान। तो कान लगा के इस म्यूजिक के पीस को सुनना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने इस एक म्यूजिक के पीस में दो म्यूजिक के पीसेस जो है उनको छिपा कर रखा हुआ है। तो दो धुने जो आपको सुनाई देंगी, आपको उन दोनों धुनों के गाने जो है वो गेस करने और मुझे डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। तो 1 2 3 रेडी, हियर वी गो।

फटाक से बताओ ये दो धुने कौन सी फिल्म की है। मिर्ची सारा इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, डीएम करो अपना नाम, अपनी सिटी एंड ऑफ कोर्स दोनों गानों के नाम। इसी के साथ मैं करती हूँ अपना काम, कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: ये होगा क्या?
1: फालसे वो चीज है जो आज भी चख लिए जाए ना तो सीधा गर्मियों की छुट्टियों में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मुझे पता नहीं कि आपने फालसों के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, और अगर नहीं तो आई मस्ट लेट यू नो कि ये ना एक बेरी फ्रूट होता है जो गर्मियों में ही मिलता है। इन फैक्ट मिलता था, अब तो इसे देखे ही जमाने हो गए यार, लेकिन 90s तक ये ठेले पर मिला करते थे और गली में से ना भैया आवाजें निकालते हुए जाते थे कि फालसे वाले। भाई साहब, हम सब अपने दो दो रुपए लेकर जो भागते थे ना फालसे लेने के लिए, और वो पेपर का एक कोन बनाकर उसमें फालसे दिया करते थे और ऊपर से काला नमक छिड़का करते थे। ओए होए होए होए होए, वो वाले फालसों का स्वाद ना एक तरफ और दुनिया में कहीं की भी स्ट्रॉबेरी एक तरफ। बचपन की खट्टी मीठी यादों की तरह ना ये फालसे भी खट्टे मीठे ही हुआ करते थे। बस बस बस बस यार, अब आगे नहीं बोलूंगी, कहीं यादों में खोकर रो ना दू। कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक विद दिस, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसे चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
2: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who that?
4: Jassi.
5: Jassi? Kaun si wali Jassi?
4: Jassi who has come, auntie ji?
5: Cut, cut. Who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: आज अगर मेरी कोई हॉबी है ना तो वो मेरी हॉबी है, लेकिन बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में अगर कोई हॉबी होती थी ना तो वो हमारी हॉबी होती थी।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और गर्मियों की छुट्टियों के दिनों को याद करते हुए आई रिमेम्बर, अगर कोई एक अपनी हॉबी बताता था तो वो हम सब की हॉबी हो जाया करती थी बॉस। लाइक आई रिमेम्बर मेरे एक कजन ने चूजे यानी कि मुर्गी के बच्चे पालना शुरू किया। वो दो चिक्स लेकर आया था और वो 2x12 हो गया था क्योंकि हर एक कजन ने दो दो चूजे खरीदे। एंड फिर सून मेरी नानी के घर में एक मिनी पोल्ट्री फार्म बन गया था। हमारा पूरा दिन ना उन चूजों की देखरेख और उनके साथ खेलने में जाता था। हमने ना उनको घर के आंगन में जो एक छोटा सा बाथरूम था जिसको कोई यूज नहीं किया करता था वहाँ रखा हुआ था बिल्ली के डर से। तो दिन भर उनके साथ खेलने के बाद हम उन्हें रात में बंद कर दिया करते थे। लेकिन फिर एक सुबह ऐसी आई हमारी लाइफ में जो कि बड़ी भयानक सुबह थी यार। जब हम सबको मामा ने उठाया और हम छत पर से उठ के सीधे नीचे पहुंचे तो देखा कि बिल्ली ने हमारे सारे चूजे मार दिए थे। किसी ने बाथरूम का दरवाजा रात में ढंग से बंद नहीं किया और बिल्ली इस तरह अंदर पहुंच गई। और बॉस वो दिन क्या वो हफ्ता ही हम सब बच्चों के लिए बहुत ही भारी रहा। हम इतना रोए कि बस उसके बाद हमें घर के बड़ों ने चूजे पालने से मना कर दिया था क्योंकि वो इमोशनल मैच्योरिटी जो आज है ना वो तब नहीं हुआ करती थी। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह। गर्लफ्रेंड्स वगैरह करता हूँ बातें।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: आज के टाइम पर हम छत पर जाना भूल गए हैं, तो छत पर सोने की तो कौन ही बात करेगा।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। लेकिन इस छत पर सोने वाली बात को तो मैं छेड़ कर ही रहूंगी यार, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों की। और गर्मियों की छुट्टियों में ना हम रोज रात में छत पर सोया करते थे। छत पर सोने से पहले शाम को छिड़काव करना और फिर अंधेरा होते ही बिस्तर लगा देना, ये रोज का काम हुआ करता था। और बिस्तर लगाने की ड्यूटी हुआ करती थी जो रोज बदलती थी। लेकिन ये ड्यूटी ना किसी भी बड़े भाई बहन की नहीं होती थी, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी हम छोटों में बांट दिया करते थे ना। आज एसी की ठंडक ठंडक तो होती है, लेकिन सिर्फ स्किन के लिए, क्योंकि दिल को ठंडक तो छत पर सोने पर चलने वाली हवा ही दिया करती थी यार। और आपने एक बात और नोटिस की कि चांद तो हमेशा से ही धरती से दूर है, लेकिन छत पर सोते थे तो चांद दूर होकर भी पास हुआ करता था। हम रोज चांद को देखते थे, उसके साइज को डिस्कस करते थे, कभी बादलों के डिजाइन डिस्क्राइब किया करते थे। लेकिन अब तो आसमान की तरफ माइंडफुली देखना भी याद नहीं रहता है। उफ, ये एडल्टिंग वाली बिजी लाइफ। लेकिन आज जब ये बात हुई है ना, तो आज तो मैं छत पर जाकर कुछ देर चांद से बैठकर बात करके आऊंगी। जमाने हुए यार कि चांद की हालचाल ही नहीं पूछे। चलो जी, नाउ विद दिस कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Cassette ke side B ka teesra gana.
2: Mirchi 90s cassette.
1: गाने की बोली कहते हैं कि आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, लेकिन हम दिल दे चुके सनम में जब ऐश्वर्या राय की आंखें देखी, ओए होए, इन गुस्ताखियों को कोई कैसे माफ कर सकता है यार। एंड स्पेशली इस गाने में उनकी आंखों ने जो डांस किया है ना, ओए होए होए होए होए होए होए, पूरा इंडिया अपना दिल हार बैठा होगा उनकी आंखों को देखकर। बाय गॉड, बट कुछ भी कहो, इस्माइल दरबार साहब का जो म्यूजिक है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस गाने के ये बोल कि काजल का एक तिल तुम्हारे लबों पे लगा दूं, चांद और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं, पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं। ये डायलॉग मोहब्बत में उस डायलॉग पर तो भारी पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ। चलो जी, नाउ विद दिस गाना फॉर योर 90s की प्लेलिस्ट, इसे सजेस्ट करते हुए इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ढूंढ लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ यही अगला गाना आ रहा, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कट।
6: अबे कौन है?
5: उत्तपा।
6: उत्तपा कौन?
5: उत्तपा, मैं दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
6: खट खट, हु दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी, आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए 4।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल

0: सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल? शाम शानदार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिर्ची ईशा आ चुकी है आपके साथ, आपको एंटरटेनमेंट का डोज देने। शुरुआत हो चुकी है हमारे शो की, जहाँ पे हम बातें करेंगे ढेरों सारे। रिसेंटली ना मैंने एक बुक रीड करना शुरू की है जिसका नाम है इकिगाई, और वो एक जापनी सीक्रेट है टू अ लॉन्ग एंड अ हैप्पी लाइफ। एंड लिटरली स्पीकिंग कि मुझे उसमें जो भी बातें हैं वो ऑलरेडी पता थी कि किस तरीके से वी हैव टू लिव आवर लाइफ, हेल्दी लाइफ। लेकिन उस बुक के आने के बाद, पढ़ने के बाद, आई डोंट नो हाउ मैजिकल इज दिस बुक इज, मैंने उन चीज़ों को बहुत सीरियसली अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया है और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। एंड आई गिव ऑल क्रेडिट टू दिस बुक, क्योंकि ये मेरे हाथ में है और मुझे ये इन्फ्लुएंस कर रही है, इनकरेज कर रही है एक हेल्दी लाइफ के लिए। बाकी बातों का सिलसिला जारी रहेगा मेरे साथ, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rabala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Milci, murga. हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी चौड़ी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया
1: है
2: फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders or driver ki job. For bright future, call now 3100813.
4: Nahi! Basanti, in kutto ke saamne mat nachna.
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: चुभती जलती गर्मी का मौसम आया और बहुत सारी खुशखबरियां भी लाया। गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल जो आउटडोर वर्क करते हैं, तो इस तपती गर्मी में उनको काम करना थोड़ा सा उनका टाइमिंग चेंज हो चुका है। जी हाँ, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अनाउंस कर दिए हैं टाइमिंग्स फॉर द आउटडोर वर्कर्स। अराउंड 10 AM से लेके 3:30 PM तक आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होंगी। एंड ये 1 June यानी कि आज से लागू हो चुका है, टिल सितंबर 15 तक ये रहेगा ऐसे ही। तो भाई बड़ी रिलैक्सिंग न्यूज है फॉर द वर्कर जो बाहर काम कर रहे हैं, इतनी धूप में इस समय काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। बस ऐसी ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.3।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। अर्ज किया है
1: इरशाद

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
2: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

कहते हैं ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार जब बोलबाला किसी सिंगर का या किसी एक्टर का चल पड़े तो बस उसी का ही चलता है काफी देर तक। ऐसे सिंगर की बात करने जा रही हूँ आज मैं जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस समय एकदम हाई है। जी हाँ, हाई तो है और ज्यादा छाई हुई है। हर गाने की बात कर लो, चाहे मूवी में स्लो सॉन्ग की बात करो या हिप हॉप की बात करो या सॉन्ग राइटिंग की बात करो, रैपिंग की बात करो, ये लेडी हर जगह है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जैस्मिन सैंडलर्स की, जो एक इंडियन अमेरिकन सिंगर है जो लिखती भी है, रैप भी करती है एंड परफॉर्म भी करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपनी जो जर्नी है जब स्टार्ट करी थी तो हमने इनको हमेशा पंजाबी एल्बम्स में देखा था विद द रेड हेयर्स। हम इनको रेड हेयर्स गर्ल बोलते थे, लेकिन इनको एक गुलाबी क्वीन भी कहा जाता है। यस, इसीलिए क्योंकि इनके एकदम रेड हेयर्स थे एंड हम उनको दूर से पहचान लेते, शी इज जैस्मिन सैंडलर्स। एंड यस, बात करें बॉलीवुड की तो आपने गाना शरारत सुना होगा, वो इन्होंने खुद लिखा है और गाया भी है। बड़ी मजेदार बात है कि इन्होंने बहुत चंद घंटों में ही इस गाने को प्रिपेयर किया था और गाया था। इंडस्ट्री में एक छाप छोड़ना और बहुत देर तक पॉपुलर रहना आपको कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जाता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी इनको हुआ था। एंड यू नो, आई थिंक बॉलीवुड में थोड़ा प्रेशर हो जाता है टू रिमेन इन द बॉलीवुड, टू रिमेन इन दिस शोबिज। बाकी आपकी किस्मत भी है और आपका लक भी है, बाकी साथ देता है तो आप बढ़ते हैं आगे, नहीं साथ देता है देन यू लीव। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगी, जैस्मिन सैंडलर्स को देख के ना मन खुश हो ही जाता है, चाहे वो परफॉर्म कर रही हो चाहे वो गाना गा रही हो, दिल से गाना गा रही है यार, उनकी आवाज बिल्कुल अलग है। बाकी आप एंजॉय करिए ये गाना जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज में, शरारत। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: Ajay Atul, the music composer duo and siblings, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: खट खट,
8: कौन है?
7: इशांत।
8: इशांत कौन?
7: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
9: Only on 89.6 Mirchi 1.
5: Vision, कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
6: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
7: खट खट,
8: कौन है?
7: इशांत।
8: इशांत कौन?
7: इशांत गदाधारी भीम, इशांत।
8: खट खट।

बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी पैसों की। One Qatari Riyal in Indian rupees is 25.97. One Qatari Riyal into Sri Lankan rupees is 90.73. One Qatari Riyal into Bangladeshi Taka is 33.68. One Qatari Riyal into Nepali rupees is 41.49. One Qatari Riyal into Pakistani rupees is 76.81. घर भेजे पैसे आईपी के साथ और ढेरों सारी खुशियां भी। Stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1 at 8.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. La vieta la burga.
1: Mirci, burga. हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
2: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करने दे, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: गलती होगी साहब जी,
1: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
2: पकड़
1: ले, मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मेहरबान कदरदान, मैं आ गई हूँ मिर्ची ईशा आपके साथ एक नया फैक्ट शेयर करने। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है, सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहां पे डबल लेटर्स तीन बार यूज किए जा रहे हैं। मींस डबल लेटर का सेट है, तीन सेट हैं डबल लेटर्स के, और वो सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जिसका नाम है, आपने सही सोचा, बुक कीपर। जी हाँ, बुक कीपर में डबल ओ भी आता है, डबल के भी आता है, डबल ई भी आता है। That's a strange one. और आप हैरान होंगे कि पूरी इंग्लिश में एक ही ऐसा वर्ड है जो ऐसा है। बाकी ऐसे फैक्ट्स के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 107।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. अर्ज किया है
1: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन,
5: इट्स हॉट।

0: समय हो चुका है वेदर चेक करने का।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: गर्मी के साथ साथ हवाएं थोड़ी बहुत भी चल रही हैं, लेकिन 43 डिग्री सेल्सियस जो आपको फील करवाएगा 44 सनी टोटली एक्सेसिव हीट थ्रू आउट दोहा कतर भाई। इतनी ज्यादा गर्मी में तो सांस भी नहीं लिया जाता और शाम में भी गर्मी उतनी ही रहती है। और अगर रात की बात करें तो रात को टेम्परेचर अराउंड 33 डिग्री तक होगा, लेकिन फिर भी गर्मी उतनी ही रहेगी। परेशान मत होइए, गर्मी को एंजॉय करिए, क्योंकि ये भी एक ऐसा मौसम है जो एंजॉय करने के लिए ही आता है। और कभी कभी नेचर हमें सिखाता है कि आपका जो पेशेंस है उसका टेस्ट लिया जाता है, कितने सहनशील हैं आप, और सहनशील के साथ साथ अपना कैसे ध्यान रखते हैं इस गर्मी के मौसम में, और हाइड्रेटेड रखते हैं कि नहीं रखते। इसलिए अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए और स्टे इंडोर्स जितना हो सकता है। एंड स्टे विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
1: हिमेश रेशम, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: जाहिर।
5: जाहिर? जाहिर हूँ।
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
5: खट खट, हू दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 6। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: इस समय बच्चे एक ही गाना गा रहे हैं, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। भाई इसी का इंतजार होता है बच्चों को, या तो जंपिंग जोन में भेज दो या कहीं प्लेइंग एरिया में, बस ये बच्चों को यही चीजें पसंद आती हैं। भाई बच्चों को आए क्यों ना, हमारे बचपन में ये सब चीजें कहाँ होती थी, हम लोग बस वो मिट्टी के ठेले बना के खुश हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए है टॉय फेस्टिवल। जी हाँ, टॉय फेस्टिवल जो कतर में आ चुका है, सबसे बड़ा कतर का शो, एकमात्र ऐसा शो जहाँ पे भाई एक महीने तक ये आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कतर में मिलेगा आपको ये एक महीने के लिए, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको ये कतर में देखने को मिलेगा। मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, यानी कि DECCC में आपको ये मिलेगा। एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लाइव शोज, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस, शॉपिंग, हर एज ग्रुप के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। देखिए हम बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं और टॉय फेस्टिवल हमें कभी निराश नहीं करता, बहुत सी ऐसी चीजें नई ऐड करता है जो हमने शायद कभी एक्सपीरियंस की ना हो और कभी देखी भी ना हो। और वही एक्सपीरियंस के साथ इस साल फिर शुरू होने वाला है टॉय फेस्टिवल। तो भाई बस थोड़ा सा सब्र और समर का टाइम आने दो, जुलाई का महीना आने दो और एंजॉय करो अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टर्बेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टर्बेंस आ रही है।
3: हैं मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पॉटलक।
5: हाउ इज द जोश?
6: हाई सर। हाउ इज द जोश?
5: हाई सर।
7: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

मैं वापस आऊंगा जी नहीं, मैं बिल्कुल भी बॉर्डर की फिल्म की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की आने वाली मूवी के बारे में, मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, जहाँ पे स्टारर परवरी वाघ इनके साथ एक्टिंग कर रही हैं एंड उसके अलावा नुजरुद्दीन शाह देखने को मिलेंगे। एंड इसकी सबसे मस्त बात ये है ना कि ये डायरेक्टेड है भाई इम्तियाज अली और एआर रहमान जी का म्यूजिक है भाई, क्या ही कहने, सोने पे सुहागा हो गया। ये मूवी हिट तो होगी होगी, जब ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना सारे तो भाई हिट होने का 100% चांस होता है। बाकी ये रिलीज होगी 12 जून 2026 को। देखना ये होगा कि ये जो रोमांटिक ड्रामा होगा ये कितना मेलो होगा और कितना खूबसूरती से दिखाया होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। तो वेट करना पड़ेगा उसके लिए। एंड फॉर मोर ऐसी चटपटी बातों के लिए सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को नियॉन 89.6 मिर्ची वन एट साथ। अच्छा।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. अर्ज किया है
1: इरशाद. इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜੂਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। और जून में बस एक ही दिन और आपको मिल रहा है ईद एक्टिविटीज को एंजॉय करने का। तो मैं आपको बता दूं, 2 जून इसकी लास्ट डेट है, DFC में हो रहा है ये ईद एक्टिविटीज। आपको लास्ट मौका ईद खत्म होने के बाद भी मिल रहा है अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं। एंट्री टोटली फ्री है, जहाँ पे फेस पेंटिंग, अरेबिक कैलीग्राफी, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री सेशन, हेना आर्ट, ट्रेडिशनल गेम्स, ये सब आपको अभी भी मिलेगा। ईद खत्म होने के बाद भी ये एक्टिविटीज 2 जून तक जारी रहेंगी। यहाँ पे आपको लाइव परफॉर्मेंसेस के अलावा स्विंग वर्कशॉप एंड पियानो परफॉर्मेंसेस बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप नहीं गए हैं या जाना चाहते हैं तो इधर जा सकते हैं, यानी कि DFC जा सकते हैं, बिकॉज ये 2 जून तक है, यानी कि कल तक है। तो आप जाइए और इंजॉय करिए, जून का महीना भी आप इंजॉय करिए। स्टार्ट तो हो ही गया जून का महीना, और इंजॉय करिए मेरे साथ, यानी कि मिर्ची के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
3: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
2: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
4: खटखट
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए।
5: खटखट हू दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
4: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रखता है, वो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। एक आर्टिस्ट को ही पता होता है किस तरीके से, नए तरीके से हम अपने अपने आर्ट को बहुत खूबसूरती से बयां कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान सकता है। वैसे ही अगर आप एक मास्टरपीस देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं रौदत अल हमामा पार्क, जहाँ पे गार्डन ऑफ लेटर्स देखने को मिलेंगे, विच इज डन बाय पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी ने लॉन्च किया है ये अशगल ने, एंड इट इज इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड खरामा। इसमें आपको देखने को मिलेगा 540 स्क्वायर मीटर की दीवार पे बहुत खूबसूरत तरीके से अरेबिक कैलीग्राफी को लिखा गया है। इसमें दिखता है किस तरीके से लेटर्स को कलरफुल फॉर्म में लिखा गया है, एंड नेचर के साथ वो खूबसूरत से लेटर्स कुछ तो बयां कर रहे हैं। एंड एन आर्टिस्ट कैन ओनली अंडरस्टैंड द अदर आर्टिस्ट। तो भाई आर्टिस्ट लोग, अगर आपको पसंद है ऐसी चीजें तो आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं मुरल आर्ट आज ही एट रौदत अल हमामा पार्क। एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na virtua la burga. Milci, burga.
1: हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: जी, कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1st September 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछ लीजिए ना, आपको क्या पड़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ
1: पिटोगे,
4: मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को,
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
8: दोनों मिलेगा।
9: उत्तर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

चुभती जलती गर्मी का मौसम आया और बहुत सारी खुशखबरियां भी लाया। गुड न्यूज फॉर ऑल द पीपल जो आउटडोर वर्क करते हैं, तो इस तपती गर्मी में उनको काम करना थोड़ा सा उनका टाइमिंग चेंज हो चुका है। जी हाँ, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने अनाउंस कर दिए हैं टाइमिंग्स फॉर द आउटडोर वर्कर्स। अराउंड 10 AM से लेके 3:30 PM तक आप बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होंगी। एंड ये 1 June यानी कि आज से लागू हो चुका है, टिल सितंबर 15 तक ये रहेगा ऐसे ही। तो भाई बड़ी रिलैक्सिंग न्यूज है फॉर द वर्कर जो बाहर काम कर रहे हैं, इतनी धूप में इस समय काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। बस ऐसी ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.3।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. अर्ज किया है
1: इरशाद. इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी
2: आएंगे दीदी आएंगे दीदी
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
2: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: खट खट
5: पुरेर
4: बनता
5: बनता हूँ।
4: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
5: खट खट हूँ दैट।
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
1: Mirchi,
6: it's hot.

0: ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ। हाँ मतलब एक जून भी खत्म हो गई। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं, मिर्ची मॉमी अवार्ड्स 5.0 आ चुका है। जल्दी से जाके अपने आप को रजिस्टर करिए। वेट किस चीज का कर रहे हैं? एक खूबसूरत सी वीडियो बनाइए अपने बच्चे के साथ, अपना बॉन्ड दिखाइए और वो वीडियो हमें सेंड कर दीजिए 5000186 पे, जहाँ पे हम उस वीडियो को देखने के बाद आपको बुलाएंगे। हमें पता लगेगा ना कि भाई आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जल्दी से जाके रजिस्टर करिए, हमारे इस मॉमी अवार्ड्स का हिस्सा बनिए और एंजॉय करिए। और मिलती हूँ आप लोगों से कल शाम शानदार में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
4: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कॉन्टेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम, लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉप 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम्स में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना।
4: नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दीरानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, चार स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये। जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। नो लाउड पे ऑफ, नो स्क्रीमिंग हुक, बस माहौल, द एटमॉस्फेयर, वो लेट नाइट लोनलीनेस, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। द राइटिंग इटसेल्फ फील्स टायर्ड इन अ गुड वे, इट्स एग्जॉस्टेड, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल पर्कशन, एम्बिएंट सिंथ्स, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड दैट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। दिस इज प्योरली मूड ओवर मेलोडी, टेक्सचर ओवर ट्रेंड। गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, फ्रॉम बंदर। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
1: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
1: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
1: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
1: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
1: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
1: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
1: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है,
1: साहब जी को गलत बात है, साहब जी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
2: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
1: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
1: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है, चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
1: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
1: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
1: पकड़ ले,
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: 89.6 FM Mirchi 1
11: Mirchi 1
12: It's hot.
0: Surin ke saath only on Mirchi It's hot. Number 10.

मामा शुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ, हाँ उनका पास थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे, एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike माशूका, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlas from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number 8.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
6: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। My pick of the week is from Dhurandhar 2, The Revenge, by the man of the moment, Jubin Nautiyal and Shashwat Sachdev. Yeh hai Aakhri Ishq.
1: Pick of the week.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो दोनों ने कौन से पिक्चर में भाई?
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और ये
4: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: खटखट,
7: कौन है?
6: दवे।
7: दवे कौन?
6: द वे यू लव मी। आई हाय मर जावा।
7: खटखट, हु दैट?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
8: Number 3.

0: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है इमोशन है क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर एंड यार क्या लेगेसी है इनकी हीरो नंबर वन कूली नंबर वन राजा बाबू पार्टनर बीवी नंबर वन मुझसे शादी करोगी हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये All directed by David Dhawan. लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो हॉलीडेज पे जाओ लाइफ एंजॉय करो लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म में वो वार्म्थ वो मिडिल क्लास मैडनेस वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है
1: See, Papa, what we want as children, if I can tell you, you know, people, yeah. or any child wants yeah. is that if you have, आपने पैसा कमाया नाम कमाया शोहरत कमाया तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा आई कीप टेलिंग देम दैट रिलैक्स आपको हॉलीडे जाना है फर्स्ट क्लास की टिकट कर आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो
1: इनको अंडा पाव ही खाना है इनको
2: वही मैं बड़ा ही वही हुआ मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए बट वो मजा अलग ही था ना एंड अ स्ट्रगल एवरीवन हैज टू डू स्ट्रगल यू नो ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है डूड व्हाट अ लाइन डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है आदित्य थर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत नंबर वन

0: सीसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
2: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
3: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

नरगिस जी बस 6-7 साल की थी जब उन्होंने मिड 30s में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, ये वो सैड स्टोरी नहीं है कि फैमिली ने फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से छोटी सी बच्ची से फिल्मों में काम करवाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट नरगिस जी की फैमिली, जिसमें मेनली उनकी मम्मा थी, दे वर क्वाइट वेल टू डू। उनकी मदर जद्दन बाई जी एक क्लासिकल सिंगर थी और एक म्यूजिक कंपोजर भी। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट कला से भरे माहौल में नरगिस जी पली बड़ी, उनको फिल्म ऑफर्स भी आने शुरू हो गए। उन्होंने कुछ 6-7 फिल्मों में एज चाइल्ड एक्टर काम किया होगा, जिसमें कहीं उन्हें बेबी नरगिस, कहीं बेबी रानी नाम से क्रेडिट दिया गया। इनफैक्ट उनकी फर्स्ट फिल्म एज लीड एक्ट्रेस भी उन्होंने तब की व्हेन शी वाज जस्ट 14। 1943 में ये फिल्म आई थी तकदीर, जिसमें उनके एक्टर थे मोतीलाल जी। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, आप कभी देखना। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सुंदर सा गाना सुनेंगे, पिक्चराइज्ड ऑन नरगिस जी, आवारा फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ, आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: हैं मोबाइल पे
3: और क्या,
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंप्लेंट।
4: नवेद लिखिए, नवेद
3: आ रही है।
5: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
7: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
8: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

40s और 50s में नरगिस जी ने ये जो सारे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाले किरदार निभाए हैं ना, इन्होंने काफी नेचुरली निभा लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, जिसकी एक वजह शायद ये भी थी कि वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही थी, बोल्ड, फेयरलेस, फाइस्टी। वो अपने जितनी भी मीटिंग्स होती थी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ वो खुद करती थी, अपने करियर के डिसीजंस वो खुद लेती थी, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं था जो उनके करियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और इसका क्रेडिट जाता है नरगिस जी की मदर जद्दन बाई जी को, जो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, और उसी तरह की परवरिश उन्होंने नरगिस जी को भी दी। आपको पता है नरगिस जी एक बहुत ही बढ़िया स्विमर थी, इनफैक्ट वो उन पहली मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने स्क्रीन पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना 1951 की आवारा फिल्म में। उन्हें क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था, अच्छा साड़ियां पहनने का भी बहुत शौक था, वो भी लाइट कलर की साड़ियां। ज्यादातर लड़कियों को एक और जो शौक होता है रोड साइड पे गोलगप्पे खाने का, वो भी उनको था। वैसे तो नरगिस जी की बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेज रही हैं कई फिल्मों में, लेकिन अगर आपने चोरी चोरी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फिलहाल उसी फिल्म का एक गाना यहाँ पर हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर मिर्ची पर
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: काउंटडाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: एक अच्छी खासी हंसती खेलती गाती सही जिंदगी को तबाह करने में क्या लगता है, एक गलत रिलेशनशिप? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वे मिड थर्टीज में एज चाइल्ड एक्टर नरगिस जी ने अपने करियर की शुरुआत की। मिड फोर्टीज तक आते आते जब वो टीनेजर थी वो काफी पॉपुलर हो गई थी, एंड देन शी मेट राज कपूर साहब 1947 में। साथ में फिल्में करना शुरू किया, प्यार हो गया, वादे हो गए। ऐसा सुनने में आता है कि राज कपूर साहब ने उनको शादी का कमिटमेंट दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो ही इस कमिटमेंट से कतराने लग गए। इधर नरगिस जी काफी सीरियस हो गई। ऐसा भी सुनने में आता है कि वो वकीलों से मिली, मिनिस्टर्स तक से मिली, ये पता करने के लिए कि क्या मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं कि राज कपूर साहब से उनकी शादी हो जाए, क्योंकि राज कपूर साहब ऑलरेडी मैरिड थे तब तक। ऐसा भी सुनने में आता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से नरगिस जी ने काफी अच्छे फिल्म ऑफर्स और काफी पैसा भी गंवा दिया। बट 1956 तक आते आते उनको ये रियलाइज हो गया कि इस रिलेशनशिप का एंड ट्रैजिक होने वाला है, और तब वो राज कपूर साहब की जिंदगी से और आरके फिल्म से बाहर निकल गई।
1: और अच्छे के लिए निकली ना। उसके बाद उन्होंने मदर इंडिया फिल्म की, जहां वो सुनील दत्त साहब से मिली।
0: तो क्या डायलॉग था, इफ इट इज नॉट दी हैप्पी इट इज नॉट दी एंडिंग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: Cut, cut.
7: Who there?
6: Agarkar.
7: Agarkar who?
6: Agar karna hai to kar, warna chhod de.
7: Cut, cut. Who there?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Purani jeans. With Charu. Only on Mirchi.

नरगिस जी, व्हाट अ स्प्लेंडेड करियर एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हालांकि शी वॉज जस्ट 51 ईयर ओल्ड व्हेन शी पास्ड अवे, पर क्या जिंदगी जी उन्होंने, क्या इंसान, क्या एक्ट्रेस, क्या वाइफ, क्या मदर, क्या सोशल वर्कर थी वो। उन्होंने एज चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की एंड शी टर्न्ड आउट टू बी दिस बोल्ड, फियरलेस, फाइस्टी, इंडिपेंडेंट वुमन थैंक्स टू हर अपब्रिंगिंग। उन्होंने अपनी लाइफ, अपने करियर के मेजरली डिसीजंस खुद लिए, कुछ थोड़े उल्टे पड़ गए, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलों में अपनी चलती कहाँ है। 8-9 साल के उस अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप से वो बाहर निकली एंड शी डिड दिस कल्ट फिल्म मदर इंडिया, जहाँ पे उनको जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला, सुनील दत्त साहब के रूप में ट्रू लव। इस फिल्म के लिए नरगिस जी को वैसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था, और उनकी जो लास्ट फिल्म थी ना 1967 की रात और दिन, उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

सुमन कल्याणपुर जी, इनका जन्म 1937 में ढाका में हुआ था, जहाँ पे इनके फादर की जॉब थी, वो बैंकिंग में थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसी जॉब के चलते 1943 में इनकी फैमिली बॉम्बे आ गई, जहाँ पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुमन जी ने संगीत सीखना शुरू किया। उन्हें पेंटिंग का भी बहुत शौक था। सुमन जी ने पहली बार कहीं पर पब्लिक सिंगिंग की तो वो थी ऑल इंडिया रेडियो के लिए। दिस हैपेंड इन 1952, जब वो 15 साल की होंगी। और पहली फिल्म जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो एक मराठी फिल्म थी, ये 1953 में हुआ। और वो पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया ये थी 1954 की मांगू फिल्म। लेकिन जो फिल्म पहले रिलीज हुई वो थी दरवाजा, इसमें सुमन जी ने काफी गाने गाए थे। वैसे आपको पता है सुमन जी के हस्बैंड रामानंद कल्याणपुर ये बहुत सपोर्टिव थे। जब जब ये रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी उनके हस्बैंड भी उनके साथ रिकॉर्डिंग सेशंस में जाते थे। हाउ अडोरेबल इज दैट। इसी बात पे सुमन जी का गाया हुआ ये अडोरेबल सॉन्ग सुनेंगे, साथ में मोहम्मद रफी जी की आवाज भी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने ये गाना लिखा है। 1967 की फिल्म फर्ज से है ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सुमन कल्याणपुर जी की जिस तरह की आवाज थी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज या सक्सेस उनको नहीं मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसकी मेन वजह ये थी कि उनकी आवाज लता जी की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि रेडियो पे गाने सुनाने वाले लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि ये लता जी की आवाज है या सुमन जी की आवाज है। कई बार फिल्म के रिकॉर्ड पे भी गलत नाम लिखा होता था। इस वजह से सुमन जी कहीं ना कहीं लता जी की ऑल्टरनेटिव या उनकी रिप्लेसमेंट बन गई कि जो गाने लता जी नहीं गा पाती थी या मना कर देती थी वो गाने फिर सुमन जी गाती थी। एक ऐसा बहुत लंबा फेज था जब लता जी ने रफी साहब के साथ गाने नहीं गाए क्योंकि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उस टाइम सुमन जी ने रफी साहब के साथ बहुत सारे डुएट्स रिकॉर्ड किए। ये भी सुनने में आता है कि कुछ पॉलिटिक्स भी खेली गई थी जिस वजह से कई अपॉर्चुनिटीज सुमन जी तक नहीं पहुंचती थी। उनकी जिस तरह की आवाज है वो बहुत सारे सोलो सॉन्ग्स डिजर्व करती थी लेकिन इतने सोलो सॉन्ग्स उन्होंने नहीं गाए। खैर उन्होंने कभी इस बात के लिए कोई एलिगेशन किसी पे नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की। उनका कहना था कि उनको जो मौके मिले वो उससे खुश थी। सुमन जी और रफी साहब का गाया हुआ ये क्लासिक हिट गाना सुनेंगे ब्रह्मचारी फिल्म से पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: घर दे कम ना रुकन गे, ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her shine।
1: टारगेट पूरे करन गे, हुन बदले रूल जमाने दे।
2: You better watch her shine।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने.
4: हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
6: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

पुनर्जन्म की कहानी वाली फिल्म महबूबा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे ना ये पिछला जन्म, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन वाली जो थीम्स होती हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। एंड सम ऑफ द मूवीज टू वॉच आउट, अगर आपने नहीं देखी है ये पिछले जन्म वाली पुरानी हिंदी फिल्में, तो 1949 की महल फिल्म है, 1958 की मधुमती, वेल ओम शांति ओम फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना वो मधुमती के क्लाइमेक्स से ही इंस्पायर्ड है, देन 1968 की नीलकमल, 1967 की मिलन, एंड हाउ टू फॉरगेट 1980 की कर्ज। वैसे राजेश खन्ना साहब और हेमा मालिनी जी, इन्होंने दो ऐसी मूवीज में साथ में काम किया, एक तो जिसका गाना हमने अभी सुना था महबूबा का, और एक कुदरत फिल्म में भी ऐसी ही थीम थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में, छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: नीरज साहब का लिखा हुआ गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कवि नीरज हैं, गोपाल दास नीरज जी। इनकी पोएम्स, इनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे। इनकी एक गजल है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू है रान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तू कल यहाँ न होगा उसका गीत विधान रहेगा। नीरज साहब का लिखा हुआ एक और बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: लिख

0: गलत बात है, ये बहुत गलत बात है जी, बहुत गलत बात है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: ये इतना क्लासिक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात फिल्म का 1974 का ये गाना उस साल गीत माला में भाई और बहनों एनुअल लिस्ट में ये नंबर 11 पे था।
1: और कभी कभी मुझे लगता है उस टाइम रोमांटिक गाने इतने पॉपुलर नहीं होते थे, मतलब होते थे लेकिन ऐसे टॉप में नहीं आते थे लिस्ट में।
0: उस साल देखिए आप, नंबर वन गाना कौन सा था उस गीत माला में, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, सैड सॉन्ग। सैड में भी मेलेडी होती है, देखो अच्छे होते हैं वो गाने। अच्छा, नंबर टू पे जय जय शिव शंकर आपकी कसम का मस्ती वाला गाना, नंबर तीन पे भी मस्ती वाला गाना झूठ बोले कौवा काटे बॉबी फिल्म का, और यू नो सैड सॉन्ग्स लाइक तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये सब ये चुरा लिया है तुमने गाने से ऊपर रहे हैं उस एनुअल लिस्ट में। और एक और अति सुंदर रोमांटिक गाना जो हम सुनने वाले हैं वो तो उस साल के टॉप 30 में भी नहीं था, सत्य पे सत्ता का दिलबर मेरे। अभी सत्य पे सत्ता का दुखी पे दुखी हो ये शायद नंबर 16-17 पे था, लेकिन दिलबर मेरे तो था ही नहीं टॉप 30 में। गलत बात है, हम नहीं मानते, इतना सुंदर गाना है ये। खैर फिलहाल गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए। एक मिनट होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आ गए वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ियां आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पहले रहा हूँ।
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। जो आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसमें परेशान हूँ मैं।
4: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स with Charu, only on me.

22 साल का एसोसिएशन और यूं ही खत्म हो गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक कंपोजर्स शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब की। वही 1949 से 1971 तक इनका एसोसिएशन रहा और इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने बनाए गए। लेकिन 1971 में जब जयकिशन जी की डेथ हो गई, तब ऐसा सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी, इन्होंने राज कपूर को साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे शंकर जी से प्रॉब्लम है और अगर वो म्यूज़िक बनाएंगे तो मैं आपकी फिल्मों में गाना नहीं गाऊंगी। और इसके बाद राज कपूर साहब ने शंकर जी से खुद को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया और अपनी फिल्मों में दूसरे म्यूज़िक कंपोजर्स को लेना शुरू कर दिया। इस एसोसिएशन की सॉर्ट ऑफ लास्ट फिल्म जो हम बोल सकते हैं वो थी 1971 की कल आज और कल। ये कल आज और कल की फिलॉसफी फिल्म में तो डिफरेंट थी, लेकिन रिलेशनशिप्स एसोसिएशंस के बारे में सोचा जाए तो भी कितनी एप्ट है कि कल क्या रिलेशनशिप था, आज क्या रिश्ता है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना बाबा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं,
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
5: पुरानी जीन्स विद चारू.

आने वाले के नाम पे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आरजू लखनवी नाम के शायर हैं, उनकी एक नज्म के शेर हैं। आंख से दिल में आने वाला, दिल से नहीं अब जाने वाला, घर को फूंक के जाने वाला, लौट के नहीं फिर आने वाला, आंसू पोंछ के हंस देता है, आग में आग लगाने वाला, दी थी तसल्ली ये किस दिल से, चुप ना हुआ चिल्लाने वाला। ये सुनिए, ये बहुत ही बढ़िया है। डाल रहा है काम में मुश्किल, डाल रहा है काम में मुश्किल, मुश्किल में काम आने वाला। ओए होए, आप भी जरा हमारे थोड़ा काम आइए, मुस्कान को कान तक ले जाइए और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड
2: बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू दैट?
5: अकबर।
6: अकबर हू?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट, हू दैट?
7: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
8: मिर्ची स्टोरीज,
9: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
10: भाई, एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं, बल्कि कम कर दी।
11: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार, इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
7: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आइकॉनिक कॉम्पोजिशन खयाम साहब की मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई खयाम साहब को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक कभी कभी फिल्म के लिए, और फिर तीसरा उमराव जान फिल्म के लिए जिसका गाना हम सुनने वाले हैं। वैसे उमराव जान के म्यूजिक के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, मिलना ही था, इतना बेहतरीन म्यूजिक है। और इसका म्यूजिक कंपोज करने के लिए ना खयाम साहब ने बकायदा उस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड में ये कहानी बेस्ड है, उसकी किताबें पढ़ी थी, अच्छे से रिसर्च वगैरह की थी, उसके बाद इसका म्यूजिक कंपोज हुआ था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।